मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार उन्नत प्रौद्योगिकियां स्टार्टअप लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन मिश्रण कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शन

0: कार्यों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है उस रीली भूमि में वृक्षारोपण। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम उस रीली जमीन में वृक्षारोपण के बारे में चर्चा करेंगे। उस रीली भूमि में फल वृक्ष लगाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहली बात तो ये कि जिस ऊसर जमीन में हम वृक्ष लगाने जा रहे हैं उसकी दशा को थोड़ा सुधारा जाए। इसके लिए मिट्टी की जांच कराते हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि उस रीली जमीन का पीएच क्या है, यानी उसमें ऊसरपन कितना है और उसमें ऊसर सुधारक कितना प्रयोग करना है। फिर जिस वृक्ष को लगाना है उसके लिए निर्धारित दूरी पर रेखांकन करके गड्ढा खोद लेते हैं। औसत रूप में गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई 1-1 मीटर रखते हैं। गड्ढे की ऊपर की मिट्टी एक तरफ और बाकी मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे में कम से कम 10-15 दिन धूप लगने देना चाहिए। यह कार्य थोड़ा पहले ही कर लिया जाता है, किंतु अगर यह कार्य न किए हों तो अभी भी यह कार्य कर सकते हैं और फिर गड्ढे की भराई करते हैं। मिट्टी को सुधारने के लिए आजकल मुख्यतः दो प्रकार के सुधारक प्रयोग होते हैं, एक जैविक और दूसरे अजैविक। जैविक सुधारकों में गोबर की खाद और कंपोस्ट की खाद तथा अजैविक सुधारकों में जिप्सम एवं पायराइट का प्रयोग होता है। यदि मिट्टी का पीएच 8.5 है तो एक गड्ढे में 40 से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से 15 किलोग्राम बालू। बालू का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जल निकास अच्छा बना रहे। चूंकि ऊसर जमीन में जल निकास की समस्या होती है अतः बालू का प्रयोग आवश्यक है। बालू के अलावा 2 किलोग्राम जिप्सम या 1.5 किलोग्राम पायराइट गड्ढे में भरते हैं। यदि पीएच 9 है तो 40 से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से 15 किलोग्राम बालू, 3 किलोग्राम जिप्सम एवं 2 किलोग्राम पायराइट। यदि मिट्टी का पीएच 9.5 है तो 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 से 20 किलोग्राम बालू, 5 किलोग्राम जिप्सम या 4 किलोग्राम पायराइट। यदि मिट्टी का पीएच 9.5 से ऊपर है तो 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 से 20 किलोग्राम बालू, 10 किलोग्राम जिप्सम या 8 किलोग्राम पायराइट डालते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गड्ढे में 250 ग्राम नीम की खली, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 150 ग्राम लिंडेन चूर्ण, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई करते हैं। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर भराई का कार्य नहीं किए हैं तो यह कार्य भी इसी समय करें। गड्ढे की भराई जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची ही रखनी चाहिए। फिर गड्ढे में पानी भर देते हैं ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। अगर कोई गड्ढा ज़्यादा बैठ जाता है तो उस पर थोड़ा मिट्टी डालकर जमीन के लेवल में कर देना चाहिए। अब बात आती है कि उस रीली जमीन में किन फल वृक्षों की रोपाई की जाए। उस रीली जमीन में वैसे तो कई फल वृक्षों को लगाया जा सकता है, लेकिन इनके गुण एवं ऊसर के प्रति सहनशीलता इनमें अलग अलग होती है। कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें ऊसर के प्रति सहनशीलता बहुत अधिक होती है। ये हैं आंवला, करौंदा, लसोढ़ा, महुआ और बेर। दूसरे औसत सहनता वाले फल वृक्ष होते हैं जिसमें हम अनार, बेल, फालसा, जामुन, शरीफा को लेते हैं। तीसरे कम सहनशील वृक्ष हैं जिसके अंतर्गत अमरूद और जैतून जैसे वृक्ष आते हैं। इनमें से जमीन के अनुसार

0: वृक्षों का चयन करके रोपाई करते हैं। अगर आंवला लगाना चाहते हैं तो बनारसी, हाथी झूल, चकैया, कृष्णा, कंचन और नरेंद्र आंवला साथ। यदि बेर लगाते हैं तो बनारसी कड़ाका, उमरान और अलीगंज मुड़िया। यदि बेल लगा रहे हैं तो बेल कागजी, नरेंद्र बेल 5 और मिर्जापुरी। यदि अमरूद लगाते हैं तो इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 और एप्पल गुआवा प्रजातियां प्रमुख हैं। इस प्रकार से गड्ढों के बीचों बीच स्वस्थ कलमी या बीजू पौधों को गड्ढा खोदकर लगाना चाहिए। पौधों को शाम के समय लगाना चाहिए और लगाने के बाद उसमें पानी दे देना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि ऊसर जमीन में वाष्पीकरण के द्वारा हानिकारक लवण ऊपर आने लगते हैं, अतः इस प्रकार की मिट्टी में अपेक्षाकृत कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि मिट्टी की दशा खराब ना होने पाए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर ऊसरीली जमीन में वृक्षारोपण करना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ऊसरीली भूमि में वृक्षारोपण विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। सावन का यह पावन माह हम सभी के जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा लाए। हे भोले बाबा, हे दयानिधि दाता, हम सब पर अपनी कृपा करें, कृपा करें। हर हर महादेव।

प्रभात की पहली किरण हमें यह संदेश देती है कि हर नया दिन ईश्वर की दिए वह एक नया अवसर है। इसे कृतज्ञता से और भक्ति के साथ स्वीकार करें।

ईश्वर की भक्ति वह दीपक है जो जीवन के सबसे घने अंधकार में भी आशा का प्रकाश फैलाता है, और इस प्रभात का प्रत्येक क्षण हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की कृपा से हर अंत के बाद एक नई शुरुआत अवश्य होती है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा और पंडित भीमसेन जोशी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु, विषय है मनुष्यता।
1: मानव जीवन एक चौराहे की तरह है, जहां विविध प्रकार की संभावनाओं की आहट के अनेक प्रकार के वाहन गुजरते रहते हैं। मनुष्य शरीर में इसीलिए अनेक प्रकार की प्रकृतियों के दर्शन भी होते हैं। मनुष्य में जड़ प्रकृति, जीव की प्रकृति, पशु प्रकृति, सामाजिक प्राणी की प्रकृति, नैतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, दैवीय प्रकृति और भगवतीय प्रकृति होती हैं। ये सारी की सारी प्रकृतियां मानव जीवन में विद्यमान हैं। थोड़ा इसे समझ लें, ऐसे मनुष्य भी आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है। मिट्टी के एक लौंदे की तरह वे जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जिनके किसी इंद्रिय विशेष का विकास हुआ है या एकाधिक इंद्रियों का ही विकास हुआ है, जिन्हें हम इनवैलिड या मेंटली रिटार्टेड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जिन्होंने समाज भावना से प्रेरित होकर कार्य बिना अपनी परवाह किए हुए किया। सामाजिक चेतना लेन देन के व्यवहार पर टिकी हुई एक व्यवस्था है। आप हमारे लिए करें, हम आपके लिए करें। इससे परे ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जिन्हें सामाजिकता से कुछ लेना देना नहीं है, वे नैतिकता के लिए जीते हैं। बुद्धि से उन्हें जो श्रेष्ठ और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा, वे सिर्फ वही करेंगे। पर इससे ऊपर ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जिन्होंने महापुरुषों के मार्गदर्शन में मूल शक्ति या पराशक्ति की खोज में अपना जीवन समर्पित किया और परम तत्व का साक्षात्कार कर उससे एकाकार हो गए। इंद्रिय मन व बुद्धि के परे जाकर आत्मकर्म का अवलंबन लेकर ऐसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करते हैं। नानक, कबीर, दादू, तुलसी, मीरा, रैदास आदि संतों की एक लंबी परंपरा इनका निदर्शन है। मनुष्य शरीर में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं, वे देवता हैं। जन्म से ही वे अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य से युक्त होते हैं। सर्वोपरि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका लौकिक जन्म नहीं होता, उनका प्राकट्य होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि से वे सर्वथा रहित होते हैं, अर्थात इनसे विवश नहीं होते, इनसे परिचालित नहीं होते। चिदानंदमय उनकी देह होती है। देश और काल की सीमा से परे अस्तित्व का सामर्थ्य उनके अंदर होता है। ऐसे लोग ही अवतार या भगवान कहे जाते हैं। मानव जीवन में विकास की संभावनाओं की बहुत गुंजाइश है, इसीलिए मनुष्य वो है जो होश से और विवेक से भरा हुआ है। संपूर्ण सृष्टि इंद्रियों के एक अंश में है, संपूर्ण इंद्रियां मन के एक अंश में हैं और संपूर्ण मन बुद्धि के एक अंश में है। संपूर्ण बुद्धि जिसके एक अंश में है वो आप हैं, अतः आप

0: अपनी महिमा पहचानें, जहां हैं वहां से आगे विकसित होने का प्रयास करें। मनुष्य होने के नाते आप पर बहुत बड़ा दायित्व है। मनुष्यता का विकास तभी होगा जब आप स्वयं सचेष्ट होंगे। बुद्धि और स्वातंत्र विधाता की ये देन केवल मनुष्य को ही है। बुद्धि और स्वातंत्र का सदुपयोग कर मनुष्यता का पूर्ण विकास किया जा सकता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। जल जनित रोग कारण और समाधान विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश जैन।
2: श्रोताओं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश जैन, आयुर्वेद विशेषज्ञ वाराणसी। आज हम जल जनित रोगों पर उसके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जल जनित रोग क्या होते हैं, उनके क्या कारण हैं, क्या उनके लक्षण हैं, इस पर चर्चा की है। आज का जो वार्ता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोग होना उससे बचना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहा गया है किसी बीमारी का इलाज से बेहतर है उस बीमारी को होने ही ना दिया जाए। तो बचने के उपायों में सबसे पहला आता है क्या, हमेशा साफ पानी पीजिए। अगर पानी की गुणवत्ता या फिर पानी की शुद्धता में आपको अगर किसी भी तरह का संशय है तो आप पानी को उबालकर उसे ठंडा करके पीना स्टार्ट करना है। घर में पानी को जहां भी रखते हैं उस बर्तन को बराबर आपको साफ करना है, उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको बंद करके रखना है, पैक करके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है हाथ धोने की आदत। हमें हमेशा खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले या फिर बच्चों को खाना खिलाने से पहले हमेशा हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम बाहर से आते हैं तो उसके बाद पानी पीने से पहले, कुछ खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भोजन की स्वच्छता, क्योंकि अगर भोजन स्वच्छ नहीं रहेगा हमें जल से उत्पन्न जो रोग होते हैं उनकी आशंका लगी रहेगी। तो हमें खाने में अच्छे शुद्ध जल से बना हुआ भोजन का उपयोग करना है। साथ में भोजन ताजा हो, खुले में रखने वाले या फिर बाजार में कई सारे कटे फल हैं उन्हें उनका उपयोग नहीं करना है। भोजन को हमेशा ढककर रखना है, उन्हें मक्खी आदि जीव जंतुओं से बचा के रखना है। अगर बीमारी हो जाती है, उल्टी, दस्त या फिर बहुत अधिक बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हमें हमेशा डॉक्टर्स की सलाह लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने घर की साफ सफाई के अलावा हमें अपने आसपास अगर गंदगी है उसे भी साफ रखना है। नालियां भरी हैं या फिर पानी जमा है तो ये भी बीमारी के कारण बन सकते हैं। कूड़े को अपने निर्धारित स्थान पर डालें, जल स्रोतों को गंदा न करें। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चों को बिना हाथ धोए खाना न खिलाएं, उनको सड़क के किनारे जो खुली चीजें हैं उनको नहीं खरीदना है। साथ में बच्चा स्कूल जाता है उसकी बोतल, उसका टिफिन, उन सभी को अच्छे से साफ कर उसमें भोजन या फिर पानी को देना है। तो इन चीजों को, सिंपल चीजों को अगर ध्यान दें तो हम कहीं हद तक जल से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनसे बहुत अच्छे ढंग से निजात पा सकते हैं। अंत में मैं प्रिय श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हम सब चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसके लिए बहुत अधिक खर्चे की भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत है कुछ अच्छी आदतें डालने की, जैसे पानी साफ करके पीना है, स्वच्छ भोजन करना है और अपने हाथ धोना है। इन सभी आदतों से हम जल से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचाया जा सकता है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। जल जनित रोग कारण और समाधान विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजेश जैन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
3: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को ना पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे सुरेश वाडेकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं और अब कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण और शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, यह तीनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 और दोपहर 12:45 पर सुनिएगा डालिया मुखर्जी का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन के 12:30 पर कलाकार हैं स्नेहा अवस्थी।

ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया आप सुनेंगे दिन के 1:15 पर। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा का महत्व विषय पर शैली श्रीवास्तव की बातचीत, साथ ही गीत संगीत। और किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत होगा शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में पशुओं में सर्रा बीमारी कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर मनीष कुमार से सतीश कुमार यादव की बातचीत। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर ज्योति सिन्हा के गाय लोकगीत। इनके ही गाय लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 9:30, क्षमा चाहती हूँ, सुबह 9:50 और दिन के 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना।

शाम 5 बजे सुनिए कार्यक्रम धरती के गीत। आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस होगा दिन के 11 बजे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 12 बजे। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे शाम 6:10 और शाम 7 बजे।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे आपके लिए रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे शाम 7:31 पर और रस माधुरी रात 8:15 पर। और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम झनकार हम लेकर आएंगे आपके लिए सुबह 10:00।

8:45 पर। ये था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए थोड़ी प्रतीक्षा।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारम्भो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्व क्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः सामाजिक सहभागितायाः सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24,2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके 10 वर्षात्मकः कारावासः 10 कोटि रूप्यकाणां दण्डः सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेष द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिक राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्र न्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभायां 26,2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु 3 वर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघ स्थितिः दुरापद्यते। अस्माद्धेतोः 4 जन

नमस्कार बनारस, सुबह के 7 बज चुके हैं और आपके रेडियो सेट पे आपके कानों में घुल रही है आपके अपनों की दुआएं और शहर की ताजा हवा, आपके सबसे पसंदीदा शो गुड मॉर्निंग बनारस में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा, और उम्मीद करती हूं कि बनारस की इस अलौकिक सुबह की तरह आपका दिल भी आज असीम आनंद से भरा होगा। और हो भी क्यों ना, आज 30 जुलाई की ये सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें, आपको और पूरे बनारस को पूरे साल भर बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, महादेव का दिन, हमारे महादेव को समर्पित सावन का महीना, पावन सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है। जब बात सावन की हो तो हमारा मन दौड़ पड़ता है बनारस के उन अर्धचंद्राकार घाटों की तरफ। सावन में जब हम दशाश्वमेध घाट की तरफ जाते हैं तो वहाँ का नजारा हमारे तन मन को पुलकित कर देता है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच माँ गंगा की लहरें मानो बाबा विश्वनाथ के चरणों को स्पर्श करने के लिए उत्साहित दिखती हैं। चारों तरफ गेरुआ रंग में रंगे शिव भक्त पैरों में छालों की परवाह किए बिना कांधे पर आस्था की कांवड़ उठाए गंगा जल लेने उमड़ पड़ते हैं। दशाश्वमेध घाट से लेकर बाबा के दरबार तक पूरी काशी बोलबम और हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से गूंज उठती है। ये जो कांवड़ियों का उत्साह है ना, और इसमें भी जब मिल जाती है हम बनारसियों की भक्ति, उनसे जो आस्था का समंदर बनता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बनारस में ही महसूस किया जा सकता है। आखिर ये साक्षात बाबा विश्वनाथ की नगरी जो है। और देखिए ना, महादेव के इस पावन महीने के स्वागत के साथ ही आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी मना रही है। कितना सुखद संयोग है ना, हमारे महादेव से बड़ा, उनसे ज्यादा निश्चल और पक्का दोस्त इस पूरे ब्रह्मांड में भला कौन होगा। जो भूत प्रेत अमीर गरीब पापी पुण्यात्मा सबको अपना मानकर गले लगाते हैं, तभी तो लोग कहते हैं भोला भंडारी जैसा कोई मित्र नहीं। तो आज सबसे पहले अपने उस परम मित्र, उन देवों के देव महादेव को याद करके दिन की शुरुआत कीजिए। सावन की इस पवित्र शुरुआत पर एक बहुत ही अच्छी बात आपके नाम करना चाहूंगी। जैसे सावन की बूंदें सूखी धरती को हरा भरा कर देती हैं, ठीक वैसे ही एक सच्चा दोस्त हमारी सूखी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देता है। दोस्तों, जिंदगी की इस भागदौड़ में आज का दिन ठहर कर सोचने का है। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां और ये कांवड़ यात्रा हमें सिखाती है कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प पक्का हो और विश्वास अटूट हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ठीक वैसे ही जिंदगी के सफर में रास्ते चाहे जितने भी उबड़ खाबड़ हो, अगर एक भी सच्चा दोस्त आपके कांधे से कांधा मिलाकर चल रहा है ना, तो आप दुनिया का हर संकट पार कर सकते हैं। तो बनारस, उठिए, इस सावन की सोंधी खुशबू को सांसों में भरिए। शाम को दशाश्वमेध घाट की दिव्य गंगा आरती का हिस्सा बनने का मन बनाइए। एक कप गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाइए और अपनों के साथ इस खूबसूरत दिन की शुरुआत कीजिए। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा आप सभी की झोली खुशियों से भर दें। आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस, क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है। अभी सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, सॉन्ग के ठीक बाद मिलेंगे आपसे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। बने रहिए मेरे साथ गुड मॉर्निंग बनारस।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस शिखा के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। दोस्तों आज का दिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेहद खास है क्योंकि आज है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। और जब भी हम दोस्ती की मिसाल देते हैं तो कृष्ण सुदामा या जय वीरू याद आते हैं। लेकिन आज इस पावन सुबह मैं आपको इतिहास के उस दौर में ले चलूंगी जहां दो महान संत न सिर्फ समकालीन थे बल्कि उनके बीच विचारों की एक ऐसी अनूठी और गहरी दोस्ती थी जिसने समाज को बदल कर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं संत कबीरदास और संत रविदास जी की। दोस्तों इतिहास गवाह है कि संत कबीर और संत रविदास दोनों 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान काशी की गलियों में जिए, रचे और बसे। इन दोनों के जीवन का एक सबसे मजबूत और पवित्र सिरा एक ही गुरु से जुड़ता था और वो गुरु थे स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद के शिष्यों में कबीर और रविदास दोनों ही शामिल थे। एक ही गुरु के साय में रहकर दोनों ने अध्यात्म और मानवता का ककहरा सीखा। गुरु भाई होने के नाते उनका रिश्ता भाईचारे और गहरी वैचारिक मित्रता में बदल गया। कबीरदास जी जुलाहे थे और रविदास जी चर्मकार। दोनों ही कर्म को ही पूजा मानते थे। काशी की तंग गलियों में जब कबीर अपने करघे पर सूत काटते और रविदास जी फटे हुए जूते टांगते तो अक्सर दोनों एक ही जगह बैठते थे। उनकी ये बैठकें किसी तार्किक बहस के लिए नहीं बल्कि समाज को पाखंड से मुक्त करने के विचार मंथन के लिए होती थी। एक सुंदर लोक कहानी मिलती है कि एक बार काशी के विद्वानों ने दोनों संतों की परीक्षा लेनी चाही। रविदास जी के पास चमड़ा भिगोने वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी था जिसे हम कठौत भी कहते हैं। कबीरदास जी वहाँ पहुँचे तो रविदास जी ने हंस कर कहा कि सच्चा मन हो तो इसी कठौत के पानी में गंगा मैया प्रकट हो सकती हैं। कबीर जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, तभी से ये अमर पंक्ति बनी और जीवन का सार बन गई। मन चंगा तो कठौती में गंगा।

कहते हैं कबीर दास जी ने रविदास जी की इस निश्चल भक्ति और पवित्र मन को देखकर उन्हें संतों में ऊंचा स्थान दिया था। स्वयं कबीर जी ने अपनी वाणियों में रविदास जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा था, साधों में रविदास संत हैं। इन दोनों मित्रों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दोनों समाज में फैले ऊंच नीच, जात पात और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ थे। कबीर अगर अपनी कड़क आवाज में कहते थे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, तो वहीं उनके परम मित्र संत रविदास जी अपनी शांत और गंभीर वाणी में समझाते थे, जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। क्या कमाल का तालमेल था ना, एक तरफ कबीर का तीखा प्रहार था तो दूसरी तरफ रविदास जी का मरहम जैसा स्वभाव। दोनों का लक्ष्य एक ही था, इंसानियत। वे अक्सर एक दूसरे के भजनों को सुनते, सराहते और समाज को एक नई राह दिखाते। उनकी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि सत्य की खोज और लोक कल्याण पर टिकी थी। आज 30 जुलाई को जब आप अपने दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करें ना, तो कबीर और रविदास जी की इस रूहानी दोस्ती को जरूर याद कीजिएगा। दोस्ती वो नहीं जो सिर्फ साथ बैठकर वक्त बिताने के लिए हो, बल्कि सच्ची दोस्ती वो है जो कबीर और रविदास जी की तरह एक दूसरे के विचारों को निखारे और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे। तो सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस, मुस्कुराते रहिए और फैलाते रहिए कबीर रविदास जी जैसी सच्ची दोस्ती की मिठास। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी में बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। उन्होंने जनमानस के सुख समृद्धि की कामना की और श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को पहले काशी कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना एवं आरती कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में प्रवेश कर षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चन किया। उन्होंने प्रदेश और देशवासियों की सुख शांति समृद्धि और लोक कल्याण की प्रार्थना की। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली पर भव्य कलश पूजन का आयोजन हुआ। गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी से श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत 1918 मंडलों में 60,000 दीप जलाए गए। संत रविदास ने अपने आचरण विचार और संदेशों से जन जागरूकता का उजियारा किया, जिसे समाज में एक वरदान की तरह देखा जाता है। भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य की उपस्थिति में गुरु पूर्णिमा के दिन वाराणसी से श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया, जो 20 फरवरी तक चलेगा। 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान, 5 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक जालंधर से काशी तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा, 26 नवम्बर से 15 जनवरी 2027 तक छात्रावास संपर्क अभियान आयोजित होगा। संत रविदास पर केंद्रित कार्यक्रमों की ये श्रृंखला 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा और संत रविदास जयंती तक जारी रहेगी। रविदास घाट पर क्रूज पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय कजरी कार्यशाला रिमझिम बरसे बदरिया का समापन हुआ। माँ गंगा की गोद में रविदास घाट पर क्रूज पर बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगीत साधकों ने गुरु शिष्य परंपरा को यादगार बनाते हुए स्वरांजलि अर्पित की। 5 दिवसीय कजरी कार्यशाला रिमझिम बरसे बदरिया का सधे सुर लय तान से समाप्त।

संपन्न हुआ। प्रख्यात गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने संगीत साधकों को सिखाई गई ठुमरी, चैती और कजरी की बारीकियों को परखा। देश के कई राज्यों और सिंगापुर से लोक परंपरा को बढ़ाने के लिए जुटे हर आयु वर्ग के प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों को उन्होंने उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वैसे अभी खतरे के निशान से ये 9 मीटर नीचे है। बढ़ते जलस्तर के कारण घाटों के किनारे मंदिरों में पानी घुस गया है और जल पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। काशी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शीतला घाट का आरती स्थल जलमग्न हो गया और तटीय इलाकों में बाढ़ का भय व्याप्त है। प्रशासन सतर्क है और राहत कार्यों की तैयारी कर रहा है, जबकि लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए अब जान लेते हैं कि 30 जुलाई की इतिहास में क्या है खासियत। 30 जुलाई 1886 को देश की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था आज के ही दिन। और 1909 में राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया था आज के दिन। 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी और 1966 में इंग्लैंड ने फुटबॉल का विश्व कप पहली बार जीता था। 1980 में वानुआतू देश को स्वतंत्रता मिली थी आज के दिन। 2007 में चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगजाओ में लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टानों की खोज की थी। 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कंपनी का आज स्थापना हुई थी। तो ये था इतिहास में 30 जुलाई का महत्व। दोस्तों, अब इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने का समय भी हो चला है। शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से होंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया।
1: विधेयक के तहत लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन का दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों के दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: इस बीच राज्यसभा ने भी कल राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर उनके जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे

0: बढ़ाने में अपना योगदान दे।
1: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों में जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित यह देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
2: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है, और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे सुना लेगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इस दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ की DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए यह व्यवस्था की गई है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए वहां विशेष व्यवस्था की गई है।
3: जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारे तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ORS वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी, और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, स्नाते सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
0: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए NCRTC ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की यह ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में शारदा, जबकि बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। बदायूं जिले में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव

0: अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन। रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7:32 हुए हैं और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए गायन। कलाकार हैं डालिया मुखर्जी, राग है बैरागी भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गौरव बनर्जी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डालिया मुखर्जी का गायन। राग था बैरागी भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गौरव बनर्जी। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: फ्रिज है, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
3: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,00,000

0: करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 379,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

0: और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादू गावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाठी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार

सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुगरे अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रावण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वसील ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के कयाम की तजवीज़ है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 में कई अहम गुंजाइशों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और कसूरवार करार दिए गए अफराद की इमलाक जब्ती जैसे सख्त इल्तजाम शामिल हैं। यह कानून इस बात को लाजमी करार देता है कि हर रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर समाज के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करे। अमले, शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए बिल में तरमीम की गई है, ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बिल को कल मंजूर किए जाने के बाद ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने कौमी ताज़ीम की बेहुरमती की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को कल मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी ताज़ीम की बेहुरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। इस मुजवजा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने जनगण मन की तरह कानूनी तहफ्फुज हासिल हो जाएगा। इस मुजवजा कानून के जरिए कौमी ताज़ीम की बेहुरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां ज़िमनी चुनाव ज़रूरी हो गया था। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज पहुंच रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके की 164 पोलिंग स्टेशनों के सभी 422 पोलिंग बूथ्स पर पुरान तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कुल 379,616 वोटर्स उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। गुजरात की मांजलपुर असेंबली हलके के लिए बीजेपी ने सतीश पटेल को, जबकि कांग्रेस ने भीका भाई रबारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीजेपी के रुकन असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के सबब ज़िमनी चुनाव जरूरी हो गया था। इंतखाबी कमीशन ने 100% वेबकास्टिंग, पोलिंग मराकज के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने के काउंटर्स और ऑनलाइन ज़ाब्ता अमल से मुतालिक शिकायतों के लिए सी विजिल सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती को नाअहल करार दिए जाने के बाद दतिया सीट खाली हो गई थी। दतिया असेंबली हलके से चुनाव के लिए सभी 291 पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी इकदाम किए गए हैं और पोलिंग से मुतालिक सभी सरगर्मियों की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। इस हलके से कुल 2,20,410 राय दहिंदगान वोट डालने के मजाज हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने की गरज से बड़ी तादाद में मरकजी और रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में कल काबीना की एक मीटिंग में सिलसिले में तजवीज को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्यात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए
और लखीसराय में पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ 96 लाख से ज्यादा रुपए मंजूर किए गए हैं।

0: काबीना ने रियासत के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और तिजारती वर्मी कंपोस्ट इकाइयां कायम करने का भी फैसला किया है।
1: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30,17,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहरा अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल की अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रहीं। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाज रानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनअती अंजुमनों के साथ मीटिंग की, जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद मुल्क की आलमी मसाबिका आरई को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मसाबिका आरई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निज़ाम की तामीर की हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नज़रिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तरा, स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी, MSMEs और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैनुफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली में 22वें JRD टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत को महारत की जानिब बढ़ना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मियार, इख्तरा और मुकाबला जाती सलाहियत के जरिए भारत में बनी हुई मसनूआत को आलमी सतह पर काबिल एहतराम मुकाम हासिल हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा हाई अलर्ट पर है क्योंकि रियासत में नदियों में सतह आब में इजाफे से कहर बरपा हो गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नजर रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज्यादा मुतासर जिला बना हुआ है, जहाँ हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वो नामजद करदा राहत कैंपों से बाहर न जाएं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा में भद्रक जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां जिले के 5 ब्लॉक्स में 322 गांव सैलाब के पानी में डूब गए हैं। पड़ोसी जिले जाजपुर में लबरेज हो चुकी बैतारानी और कानी नदियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद तौर से मुतासिर किया है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। महानदी के बलाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से सतहआब में इजाफा हो रहा है, जिससे दरमियानी दर्जे के सैलाब और नदी के तास में पानी भर जाने का खदशा है। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात ने नौपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि दीगर 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्रक, कालाहांडी और नवरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: केरलम के 3 जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: शुमाली केरलम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तवक्को है कि जुमे और हफ्ते को केरलम में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खित्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार

0: के हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने लाखों शिव भक्तों की हस्ब मामूल आमदरफ्त, उनकी आसानी और तहफ्फुज़ के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कांवड़ यात्रा के लिए हिफाजत के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नीम फौजी दस्तों के साथ रियासती पुलिस के अमले को कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते कौमी शाहराओं, बड़े घाटों, मंदिरों और दीगर हसास मुकामात पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क्स और जदीद मरबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों अकीदतमंदों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में ट्रैफिक को मुंतकिल करने से मुतालिक इंतजाम को नाफिज किया गया है ताकि कांवड़ियों और दीगर लोगों के बहिफाजत और खुश असलूबी से आने जाने को यकीनी बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ की डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक महीने के लिए राजधानी के कई रास्तों पर ट्रैफिक मुंतकिल किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर एनसीआर में मुसाफिरों की सहूलियत के मद्देनजर एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले अकीदतमंदों के लिए रेलवे ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। अयोध्या में आला अफसरों ने राम की पैड़ी और नया घाट इलाके का मुआयना किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं की सहूलियत और हिफाजत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिनमें जिगजैग की छाया, ग्लूकोज वाटर और ओआरएस तकसीम किए जाएंगे। अकीदतमंदों पर फूल भी बरसाए जाएंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। ये नशावर अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्ते तवील एक जन भागीदारी मुहिम है। भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में पैरा एथलेटिक्स में एक तारीख रकम की है और मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल में दिलीप गावित ने सोने का तमगा और मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा जीता है। गावित ने सोने का तमगा जीतने के लिए 10.71 सेकंड में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, जबकि वासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और 10.83 सेकंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
3: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इंकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। रियासत में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने नीट पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के सीबीआई के दावे की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने वंदे मातरम की तौहीन को अब काबिले सजा जुर्म करार दिए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का इल्तिजाम है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुहरा अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा, इस छोटे से अंतराल के बाद।
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
6: जी
7: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट

0: करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658
3: 0542227658।
4: लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और मैं हूं आपकी रेडियो हमसाथी नैना और लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा। श्रोताओं, आज सावन का पहला दिन है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई है। बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम बारिश और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को आनंद से भर रही है। ऐसे सुहावने अवसर पर आइए जानते हैं कि आखिर सावन का यह प्यारा महीना इतना सुंदर और विशेष क्यों माना जाता है। तो श्रोताओं, सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है। यह वह समय है जब तपती धरती बारिश की बूंदों से तृप्त हो जाती है, पेड़ पौधे नई ऊर्जा से भर उठते हैं और खेतों में हरियाली लहराने लगती है। अब तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती ने हरे रंग की वस्त्र को पहन लिया हो। बारिश के फुहारे, झूमते पेड़, कोयल की मधुर कूक, मोर का नृत्य और ठंडी हवाएं हर किसी के मन को मोह लेती हैं। यही कारण है कि कविताओं में कवियों ने और साहित्यकारों ने सावन को प्रेम, विरह, सौंदर्य और आनंद का प्रतीक माना है। तो दोस्तों, सावन के इस पावन महीने की और मधुर गीतों के इस कार्यक्रम मधुरिमा की शुरुआत करते हैं हम सावन के इस प्यारे से गीत के साथ।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

श्रोताओं, सावन का महीना हम सभी को बहुत प्रिय है। उसी प्रकार यह महीना भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। कई श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और इसी कारण देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है और हर हर महादेव, बम बम भोले के जय घोष से वातावरण एकदम भक्तिमय हो उठता है। और इसी जयकारे के साथ आइए सुनते हैं सावन का एक और प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। और कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मधुरिमा के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज सावन का महीना आ गया है। आज सावन के महीने का पहला दिन है और इस महीने में ग्रामीण भारत में एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है। गांव के पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, घरों में लोग गीत गाते हैं, महिलाएं पारंपरिक परिधानों में तीज और अन्य पर्वों का उल्लासपूर्वक स्वागत करती हैं। हरी हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े पहनती हैं और इसी के साथ यह महीना परिवार, संस्कृति और परंपराओं को एक सूत्र में बांधने का अवसर भी बन जाता है। यही नहीं दोस्तों, अगर कृषि की दृष्टि से देखें तो सावन का यह पावन महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर होने वाली वर्षा किसानों के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं होती है। इसी वर्षा के सारे धान और अन्य खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार की नींव रखी जाती है। इसलिए किसानों को भी सावन के इस खास महीने की बेसब्री से इंतजार रहता है। और दोस्तों, सावन हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है, वह है प्रकृति से प्रेम करने का। यानी कि अगर हमें यह हरियाली, यह स्वच्छ वातावरण, यह स्वच्छ हवा, निर्मल वर्षा चाहिए तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। और इसी संदेश के साथ एक बार फिर मधुर गीतों के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

प्यारे श्रोताओं, सावन का पहला दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर कठिन समय के बाद खुशियों के फुहारे अवश्य आते हैं। जैसे वर्षा सूखी धरती को नई जिंदगी देती है, वैसे ही आशा और विश्वास हमारे जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। और अंत में दोस्तों, आपका यह सावन सुख शांति और खुशियों से भर जाए। आपको और आपके समस्त परिवार को सावन के इस पावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कार्यक्रम के अंत में सुनते जाइए सावन का एक और प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपने रेडियो दोस्त नैना को अनुमति। आपको आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिय का।
1: कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों ने महोबा तहसील के पचपहरा गांव पहुंचकर अमर सपूत जगदीश यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर सपूतों के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग पूर्व सैनिकों के द्वारा सुनाए गए। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष कैप्टन देवीदीन यादव ने बताया कि 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में देश के 527 अमर सपूत शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में वीर भूमि से बालेंद्र सिंह और जगदीश यादव ने शहादत दी। वहीं गंजगांव के बलदानी बालेंद्र के बड़े भाई रणविजय सिंह ने कहा कि भाई ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत महोबा जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संचारी रोगों के लक्षण, बचाव एवं स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और संचारी रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें, स्वच्छ वातावरण बना

0: रखना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाना इन बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने छात्राओं को औषधीय पौधों के महत्व, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा नियमित दिनचर्या अपनाने के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनैने ने कहा कि जागरूकता ही संचारी रोगों की रोकथाम का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि लोग समय रहते सावधानी बरतें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें तो डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ने के कारण यूपी मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जल स्तर अधिकतम भंडारण क्षमता तक पहुंच गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सिंचाई विभाग ने एहतियातन बांध के दो फाटक करीब 1.5 फीट तक खोलकर 4100 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा। पानी छोड़े जाने के बाद महोबा और झांसी जनपद के नदी के किनारे बसे 15 गांव में काशीपुरा, धवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगारा घाट, सेवड़ी और सिलैया गांव के साथ साथ झांसी जनपद के लहचूरा, बरौड़ा, अस्पुरा, झारखंड और सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्राम प्रधानों, लेखपालों तथा संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सचेत करने और नदी के तटों पर अनावश्यक आवाजाही रोकने के निर्देश दिए गए। लोगों से अपील की गई कि वे नदी में स्नान, मवेशियों को पानी पिलाने तथा अन्य किसी कार्य के लिए नदी के निकट न जाएं तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अभर अभियंता रामाश्रय ने बताया कि लहचूरा बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर तथा अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर निर्धारित है। लहचूरा बांध पूर्ण क्षमता से भर गया है। अर्जुन नहर के जरिए बांध से करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जो अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध, कबरई बांध में पहुँच रहा है। इन बांधों का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन ने धसान नदी के किनारे बसे गाँव में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है। 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान पुलिस फोटोग्राफी डॉग स्क्वाड कंप्यूटर एवं सबोटाज चेक प्रतियोगिता में महोबा पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में महोबा टीम के निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने पेशेवर कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक अपने नाम किए। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि प्रयागराज जोन में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने महोबा पुलिस के लिए गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता पूरे महोबा पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है। इससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। महोबा जिले में 900 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत व्यापक कार्य कराए गए। जिले के 416 गांव में से 343 गांवों को इस योजना से जोड़ा गया। योजना के सभी ओवरहेड जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गांवों में 3213 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के मुकाबले 3206 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। घरेलू नल कनेक्शन का कार्य 99.83% पूरा हो चुका है, जबकि सड़क मरम्मत का कार्य भी अधिकांश गांव में पूरा किया जा चुका है। स्थानीय निवासी सुमन देवी बताती हैं कि वे कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थीं, लेकिन आज घरों में पानी साफ आ रहा है। बम्हौरी काजी निवासी मोतीलाल कुशवाहा बताते हैं कि वे पहले कुओं से पानी भरते थे, पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आज जल जीवन मिशन योजना से अब उनके परिवार में स्वच्छ पानी आता है।
1: पहले हम लोग कुआं से पानी भरते थे, बड़ी परेशानी होती थी। अब जल जीवन मिशन के तहत हम लोग टोंटी वाले पानी से पानी भरते हैं, पानी रोज आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे दर्द को समझा और हमारी हालात बदल गई, पानी मिल रहा है।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है जीएन चौबे का।
3: 6 जुलाई को गोरखपुर के नगरीय और व्यावसायिक विकास को और ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर नगर निगम के 80 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बांड लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। नगर निगम इस बांड से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने में करेगा। यह अत्याधुनिक और बहुआयामी कॉम्प्लेक्स गोलघर स्थित जलकल परिसर में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा म्युनिसिपल बांड के क्रियान्वयन से जुड़े 80 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम जलकल परिसर में एक अत्याधुनिक और विशाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी स्टेक होल्डर

0: बिल्डर्स और ट्रस्टियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से सुनिश्चित की गई थी, जिसके बाद इस लोक कल्याणकारी और राजस्व जनित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट बांस स्थान फोर लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की लागत वाले 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि जब भी मौका मिला कांग्रेस और सपा ने भारतीय मान बिंदियों पर कुठाराघात किया है। सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है, जबकि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब उसने सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देकर भगवान श्री राम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सपा जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती है, इससे आम जन को सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है।
1: ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, ये सब चुनने का परिणाम क्या है, विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है।
0: सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है। भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया तब भी इसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 813.52 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की विकास परक उपलब्धियों को नई ऊंचाई देने के लिए आयोजित जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले इंसेफ्लाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नियति बन चुकी थी, इसकी चपेट में आकर हजारों बच्चों की मौत हो गई, पर तब की सरकारों के कान में जूं तक नहीं रेंगता था। सरकारें कान में रुई डालकर सोती रहती थीं। उन्होंने जनता की पीड़ा महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों और नौजवानों के साथ कांग्रेस और सपा ने जितना शोषण और अत्याचार किया उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिले में श्रावण मास को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। भगवान शिव के मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। आगामी 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी, जिसमें भगवान शिव के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई को लेकर तैयारी की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ होगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार कमलेश पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम घनसीरिया थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, ये दिनांक 31 मई 2026 से लापता हैं। कमलेश की आयु 27 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। आखिरी बार इनका पहनावा सफ़ेद शर्ट और काला लोअर था। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को या अपने नज़दीकी थाने को सूचित करें।

अगली सूचना भी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनेश पुत्र राम शक्ल निवासी ग्राम गुलपुर नौगवां थाना डमंडगंज जनपद मिर्जापुर, ये 16 अप्रैल 2026 से लापता हैं। दिनेश की आयु 37 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। आखिरी बार इनका पहनावा टी शर्ट और नीला लोअर था। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर या अपने नज़दीकी थाने को सूचित करें। अगली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार नीतू बिंद पुत्री सोमरू बिंद निवासी ग्राम शिवपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर, ये दिनांक 10 मई 2026 से लापता हैं। नीतू बिंद की आयु 21 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। आखिरी बार इनका पहनावा काला रंग का सूट सलवार था। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर को या अपने नज़दीकी थाने को सूचित करें। और अब अंतिम सूचना भी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार संगीता पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम बबुरा रघुनाथ सिंह थाना डमंडगंज जनपद मिर्जापुर, यह पिछले कई दिनों से लापता है। संगीता की आयु 36 वर्ष, कद 4 फीट 11 इंच, रंग सांवला, चेहरा सामान्य है। आखिरी बार इनका पहनावा हरे रंग की साड़ी थी। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर या अपने नज़दीकी थाने को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए थोड़ी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामाइन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान मोहम्मद सईद अख्तर। आदाब कबूल फरमाए। सामाइन, 31 जुलाई 1980 का दिन बर्रे सगीर की मौसीकी के आसमान पर एक गहरी उदासी का दिन था। उस रोज एक ऐसी आवाज खामोश हुई जिसने लाखों दिलों को छुआ, जो सिर्फ नगमा नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से निकली हुई पुकार थी। वो आवाज थी सुरों के ताजदार, लफ्जों के फनकार और जज्बात के सफीर मोहम्मद रफी साहब की। सामाइन, आज हमने अपने सुनने वालों के लिए मोहम्मद रफी की वफात पर ही अपने उर्दू प्रोग्राम में मोहम्मद रफी पर एक स्पेशल प्रोग्राम का अहतमाम किया है, जिसको तहरीरी शक्ल और आवाज दी है मोहतरमा शाइस्ता जाहिद साहिबा ने। तो सामाइन, आइए आपकी समातों के गोश गुजार करते हैं।

0: कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं।
1: सामयी नादाब, बीते कई रोज से दिल में एक अजब सी बेचैनी ने घर कर लिया है। दरअसल मुझे तलाश है एक 10-11 साल के मासूम से बच्चे की। क्या आप मेरी इस तलाश में मदद कर सकते हैं? शुक्रिया। तो चलिए, आज हम आपको अपने साथ माजी के सन 1924 के दौर में लिए चलते हैं। तकसीम हिंद से कबल ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर लिए चलते हैं, जो दौरे हाजिर में शहर लाहौर के नाम से मशहूर है। तसव्वुर कीजिए उस छोटे से गांव के बारे में, जहां पंजाब की मिट्टी फजाओं में अटखेलियां किया करती थी। शहर लाहौर के पुरकैफ नजारों, बुर्जों, मीनारों और बेशुमार यादगारों से गुजरते हुए आपको भाटी दरवाजा मिलेगा, जिसमें दाखिल होने के बाद बाजार की रौनकों की सैर करते हुए किसी दोशीजा की नाजुक कमर सी पतली तंग गलियों में दाखिल हो जाइएगा। गौर कीजिएगा, इन गलियों के दोनों तरफ वक्त की झुर्रियां पड़े बोसीदा खस्ता हाल मकानों पर जैसे वो अपनी जवानी की दास्तान सुनाते सुनाते बस अभी खुल के बिखर जाएंगे। लेकिन आपको एक लम्हा भी यहाँ पर रुकना नहीं है। आपको तो तलाश है एक तंग गली के उस नुक्कड़ की, जहाँ नीली रोशनाई से लिखा एक बोर्ड मिलेगा, जो महल्ला चौमाला की शिनाख्त का इसरार करता हुआ मालूम होगा। इन्हीं गलियों में कहीं आपको एक तारा लिए एक फकीर दुनिया के झमेलों से बेखबर अपनी ही धुन में गोता लगाता हुआ कभी इस दर तो कभी उस दर गाता गुनगुनाता मिलेगा। ठीक उसी फकीर के पीछे आपको एक 10-11 साल का मासूम सा फरिश्ता सिफत बच्चा भी नजर आएगा, जो बड़ी ही हैरतों से उस फकीर की धुन की ताने बानों को अपने जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा था।
2: खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार।
1: पहचाना आपने, यही तो है सरदार गली में रहने वाला 11 साल का वो मासूम बच्चा, जिसे आज आप और हम मोहम्मद रफी के नाम से जानते हैं, जिसने इन्हीं गलियों में बचपन से लड़कपन का सुरीला सफर तय किया। यहीं पर कैफो किंग मोहम्मद रफी ने अपनी मौसीकी से गांव की मिट्टी की मोहब्बत से वो चराग रोशन किए, जो ता कयामत तक मौसीकी के आसमान में सूरज की तरह दमकते रहेंगे।

तो चलिए आज हम आपको मौसीकी के शहंशाह मोहम्मद रफी साहब के बचपन से लेकर शोहरत के उरूज तक की जिंदगी के कुछ औराक पलटते हुए थोड़ा सा उनको और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। रफी साहब के वालिद हाजी अली मोहम्मद एक जमींदार थे जिनके नजदीक मौसीकी महज एक शौक थी, मगर वो इस बात से लाइल्म थे कि रफी साहब के सीने में ये शौक दरअसल एक शोला बन के भड़क रहा था। 13 बरस की उम्र में आपका खानदान लाहौर चला गया, जहाँ रफी साहब ने उस्ताद अब्दुल वहीद खान से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की। इस तरह उनकी आवाज ने परवाज के पर तोले। कहते हैं महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में जनाब कुंदरलाल सहगल और मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा को बतौर सिंगर स्टेज पर परफॉर्म करना था, लेकिन तभी स्टेज पर बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल साहब वक्त पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में श्याम सुंदर नाम के एक शख्स ने, जो कि रफी साहब के बड़े भाई के जानने वाले थे, तजवीज रखी

0: कि जब तक सहगल साहब नहीं आ रहे तब तक इस लड़के से कुछ गवा लिया जाए और इस तरह रफी साहब को स्टेज पर अपना हुनर आजमाने का एक नायाब मौका मैसर हुआ। बस फिर क्या था, एक सूटकेस में अपने साजो सामान के साथ अपने चंद ख्वाब समेटकर अपनी आवाज के शहर से जमाने भर को दीवाना बनाने के लिए निकल पड़े मोहम्मद रफी शहर मुंबई की तरफ, जहां तकदीर रफी साहब की जिंदगी का एक नया बाब लिखने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि रफी साहब को अपना मकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। रफी साहब ने अपना पहला नगमा फिल्म गुल बलोच के लिए 1944 में गाया था। बम्बई आने के बाद रफी साहब की मुलाकात मौसीकी के सरताज नौशाद साहब से हुई। उन्होंने पहले आप नाम की फिल्म में रफी साहब को गाने का मौका दिया। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का रफी साहब के लिए इजहार जज्बात।
1: गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है।
0: नौशाद साहब के साथ रफी साहब की जोड़ी खूब जमी। 1946 में अनमोल खड़ी, फिर शहीद, मेला, दुलारी जैसी फिल्मों में रफी साहब ने नौशाद अली की तर्ज पर कई हिट नगमे गा के मकबूलियत हासिल की। लेकिन सही मायनों में 1951 में जब नौशाद साहब ने फिल्म बैजू बावरा के गाने रफी साहब से गवाए, तो इन नगमों ने हिंदुस्तानी सिनेमा जगत में रफी साहब की पहचान को और मजबूत कर दिया। नौशाद साहब ने रफी के अंदर के गायक की पिच और रेंज को पहचान लिया था, और फिर जमाने को मिले कुछ अनमोल भजन जिनके अंदर सोज भी है, पुकार भी है और इसरार भी है।

ने बुलंदियों के आसमान छू लिए। इसके बाद 1966 में फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओ इस कदर मकबूल हुआ कि उन्हें चौथे फिल्म फेयर अवार्ड के एजाज से नवाजा गया। 1968 में शंकर जयकिशन की हिदायत में फिल्म ब्रह्मचारी के गाने दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर इसके लिए इस अजीम फनकार को 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यहाँ पर 1968 की फिल्म नील कमल के लिए रफी साहब के गाए एक नगमे का जिक्र भी करना बेहद जरूरी है। कहते हैं रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले ही रफी साहब ने अपनी बेटी की मंगनी की रस्म अदा की थी। इस नगमे को गाते वक्त रफी साहब बाकायदा सिसकियों से रो रहे थे। आलम ये था कि सभी साजिंदों की आंखें भी उनके साथ नम हो उठी।

0: उनके गाए नगमे अमर हैं, चाहे वो रोमांटिक सिचुएशन हो या सोज भरी। उनकी गुलकारी में जो अदाकारी थी वो बेजोड़ थी। शम्मी साहब को उनके इंतकाल की जब खबर मिली तो वे एक सदमे में आ गए। किशोर साहब अपने हर शो की शुरुआत में रफी साहब को कुछ यूं याद करते थे।
1: इससे पहले कि मैं अपने गीत आपके सामने पेश करूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब मरहूम वो हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, भाई की तरह थे, तो मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम उनके गीत से मैं शुरू करूं।
0: रफी साहब की तारीफ करना छोटा मुंह और बड़ी बात करने जैसा है, या ठीक उसी तरह जैसे सूरज को कोई चिराग दिखाए। आज हम इस अजीम कुलकार की बरसी पर उनके फन को सलाम करते हुए खुलूस अकीदत पेश करते हैं। छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है, अब तो बस आवाज ही आवाज है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर ज्योति सिन्हा के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फूल और अंगारी फिल्म से। इस गीत में आवाज दी है कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी ने। गीतकार हैं रानी मलिक और संगीतकार अन्नू मलिक।

आप सुन रहे थे फूल और अंगारे फिल्म का यह गीत। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहरा फिल्म से। गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है वीनू शाह ने।

मोहरा फिल्म का यह गीत आप सुन रहे थे और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनवाते हैं आपको किंग अंकल फिल्म का यह गीत। इस गीत में आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, और कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सौतन फिल्म से। इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं सावन कुमार ने और संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने।

गीत में आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

माँ फिल्म का यह गीत आप सुन रहे थे। गीत को आवाज़ दी थी पूर्णिमा ने, संगीत से सजाया था अनु मलिक ने और गीत की रचना की थी समीर ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जान तेरे नाम फिल्म से।

जान तेरे नाम फिल्म का यह गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं कुमार शानू और आशा भोसले की। गीत की रचना की थी रानी मलिक ने और संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से।

गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की। गीत की रचना की है अनिल पांडे ने और संगीत दिया है संदेश शांदिल्य ने।

कभी खुशी कभी गम फिल्म का यह गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गर्व फिल्म से। गीत को आवाजें दी हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण ने।

गर्व फिल्म का यह गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं श्रेया घोषाल और उदित नारायण की, और संगीत से सजाया था साजिद वाजिद ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बागबान फिल्म से। गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत की रचना की है समीर ने और संगीत दिया है आदर्श श्रीवास्तव ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को।

प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। तो श्रोताओं, आपको पता है इस कार्यक्रम में हम पहले से आए हुए मेल को शामिल करते हैं, लेकिन जो श्रोता आगे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें उनके लिए हम अपनी मेल आईडी बताना चाहेंगे। हमारी मेल आईडी नोट कीजिए, eirvnsfgexp@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, eirvnsfgexp@gmail.com। इस मेल पर आप जो भी मेल करेंगे आज, वो अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

तो अभी हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है फरमाइश गीत एक्सप्रेस। आज भी मैंने मेल खोला तो देखा मेल हमारे पास टोटल जानते हैं कितने हैं, 72,664 मेल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में शो कर रहा है। और आप समझ लीजिए कि 72,664 मेल्स में आपके मेल को छांटना है हमें। बहुत से मेल रिपीट भी होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि रिपीट ना होने पाए। तो अब शुरू कर रहे हैं और पहला मेल हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मेल हमें भेजा है गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। और इन्होंने लिखा है आज सावन माह की शुरुआत होगी, मतलब इन्होंने कल ही शायद ये कार्य भेजा था। और

की शुरुआत होगी, मतलब इन्होंने कल ही शायद ये कार्य भेजा था, और फरमाइश भी इसी टाइप की इनकी है, तो उसी फरमाइश को हम पूरी करेंगे। और ये मेल भेजा है मारहरा दरवाज़ा एटा से, नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया अंजुमन खान का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, तिलक तंबोली, गांव पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। गांव पजनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। आप हैं धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान, राम देवरा से बाबूराम, जयपाल डांगरी से खुदा बख्श, खलीफा खलीफों की बावड़ी से। मनमोहन सिंह गांव मड़वा हसनपुर टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश से आपने मेल हमें प्रेषित किया है। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। पुरानी भिलाई 3-14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्य। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा और हबीबा। अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी, अहमद नगर बजड़िया वाराणसी से। बोरखेड़ा पित्रमल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूर्त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूर्त। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म आया सावन झूमके का यह गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज। जी हाँ दोस्तों, सावन की महीने की शुभकामनाओं के साथ सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

आया सावन झूम के। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और इस गीत को सुन के तो लगा होगा ना कि सावन आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सावन आ गया है, जिसका इंतज़ार हम एक वर्ष

से कर रहे थे। हर वर्ष हम इंतजार करते हैं कब सावन आए और कब हम एक गीत सुने, और जब सावन आता है ना तो निश्चित तौर पर मन प्रफुल्लित हो जाता है, चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत सा नज़ारा। तो और नज़ारा देखते हुए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र डालें तो देखते हैं अगला मेल हमें किसने भेजा है। ये मेल भेजा है बहलोन नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और इनके प्यारे बेटे चटकू और मटकू। मुल्लापुरा दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति, माताजी निर्मला त्रिपाठी। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुन और गुड़िया। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से ये मेल हमें भेजा है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। पटेल नगर मुगल सराय से आकाश सिंह, शशि सिंह और आस्था सिंह का भी मेल हमें मिला है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज और साहिल बजाज व बिट्टा बजाज। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से आपने मेल हमें भेजा है। पटीदार रोड मर्डी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंशु नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। तेलंगाना भोंगेड़ से मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने भी हमें मेल भेजा है। नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना एक बार फिर आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

क्या कहता है? जी हाँ, सावन आता है तो बारिश भी तो लाता है ना। और बारिश की बूंदें, जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो फुहार सी पड़ रही थी, तो सचमुच लग रहा था कि वाकई सावन आया है। तो सावन से भींगा हुआ ये जो महीना होता है, बारिश से जो होती है, तो निश्चित तौर पर मन प्रफुल्लित तो होता है। और जब मन अच्छा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर वही बात हम कहेंगे कि देखिए, मन तभी अच्छा होता है जब पर्यावरण अच्छा होता है हमारा, और जब पर्यावरण अच्छा होता है तभी बारिश की बूंदें आती हैं। तो हम पिछले कई हफ्ते से कह रहे थे कि अभी अभी भी मान लीजिए, जिन्होंने अभी भी कोई पौधा नहीं लगाया है ना, तो अब तो लगा दीजिए, ठीक है, इतना तो कर दीजिए भाई। मैं इसी उम्मीद से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखता हूँ अगला मेल किसका है। ये मेल भेजा है मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवन जैन, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार का भी मेल हमें मिला है। और ये मेल भेजा है जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल।

sexual. पटियाली रोड का ये मेल तो शामिल हो चुका है। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। कुमार हैडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। कोरसा भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण इंगले, आशीष मोहर करे। गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर, सहजप्रीत सिंह ने ये संदेश भेजा है। जिला एस ए एस नगर मोहाली पंजाब से गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचिल वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मेल हमें भेजा है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, यासना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और अरिधान खुराना। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं मिलन फिल्म का गीत, मुकेश और लता की आवाज में। शब्द रचना एक बार फिर आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। इस कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपुताना परिवार। ईमेल भेजा है हमें मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजम कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और इनकी प्यारी कोकुरानी। गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान। पटेल नगर मुगलसराय से आप हैं सुनील कुमार सिंह। लल्लापुरा वाराणसी से अलीसा, अयान खान, अलीजा और एनुल खान। करौता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, राहुल प्रजापति। ग्राम बरठी पोस्ट सकलडिहा चंदौली से इमिरति यादव का भी मेल हमें मिला है। शुक्लपुरा वाराणसी से परवेज अहमद और फागु सोनकर।

गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अलग अलग फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

रोटी कपड़ा और मकान। अब आप सुनेंगे इस फिल्म का गीत जिसे सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का। ओबरा सुनभद्र से शुभम और आयुषी। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला, वीनस। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद का भी मेल हमें प्राप्त हुआ। वीरमगाम गुजरात से अजीता भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश, सन्नी भावसार। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मारकंडे, ममता मारकंडे और बेबी किट्टू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल। चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। डांडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी वाय हिमाक्ष। जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर वर्मा मल्लिक का लिखा हुआ गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आवाज, लता मंगेश।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, और ये गीत उस जमाने से भी आज भी बहुत ही फेमस रहा। और जब भी ये गीत बजता है ना, तो निश्चित तौर पर कुछ कुछ तो होता है कि वाकई रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और तड़प के रह जाता है जब ये मौसम आता है प्रेसी। तो इस मौसम का सोचिए कितना आनंद है और इस मौसम की कितनी कशिश होती है कि इंतज़ार करता है हर आदमी अपने साथ रहने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मेल किसने भेजा है। ये बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव ने भी संदेश में भेजा है। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामण शेंडे जी

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने कोह का भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेत कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने मेल में भेजा है दतरंगी से। अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक, कोल सिटी बरका काना से। गांव सगोरिया, तहसील रामगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से श्याम मेहर, निकिता, आयुष, पीयूष मेहर। कृष्णा पार्क, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। छत्तीसगढ़, डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। डेर पाटन, गुजरात से धीरज वी रबारी। ज्योतिनगर, नोखा, राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनाधरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का। तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम के अंत में किशोर कुमार की आवाज में महबूबा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत आर टी बर्मन का।

इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। फरमाइश गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका सावन बहुत अच्छा हो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम

0: बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
1: श्रोताओं, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
0: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल

0: प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
1: श्रोताओ, उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
0: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
1: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
0: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
0: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं, आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
0: जी
1: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
0: लब्ध प्रतिष्ठ।
1: इसका अर्थ है
0: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
1: तो श्रोताओ, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने

0: अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
4: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
3: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
4: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
3: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
5: चलो,
6: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
2: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो चलो चलो,
7: अरे पकड़ो, चलो चलो चलो, मुझे
8: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है,
5: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
2: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
2: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर

0: के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है, और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया।

0: गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। दो सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
1: अरे आजा आजा आजा।
2: हाँ,
1: इंजेक्शन लगा दूँ?
2: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी। हाँ,
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
2: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
2: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
2: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
5: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

0: और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना,
4: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। उसके पहले ये संदेश।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए
9: 0542227658।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें,
10: 0542227658।
6: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं स्नेहा अवस्थी। इनके स्वर में सुनिए पहले कबीरदास की ये रचना

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं स्नेहा अवस्थी। कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में सुनिए नानक देव की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थी स्नेहा अवस्थी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डालिया मुखर्जी का गाया राग धानी। आपके साथ तबले पर संगति की है गौरव बनर्जी ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे डालिया मुखर्जी का गाया राग धानी। आपके साथ तबले पर संगति की थी गौरव बनर्जी ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।
2: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: मीडियम वेव 241.5 शर्मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का

इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आईएएसवी त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई

आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 241.564 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार गुड़िया पुत्री मुन्नू चौहान निवासी ग्राम तेंदुई थाना सकलडीहा जनपद चंदौली कहीं लापता हो गई हैं। गुड़िया के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 23 वर्ष, लंबाई 4.5 फीट, रंग हल्का गोरा है, चेहरा लंबा है, डील डोल सामान्य है। ये जब लापता हुई थी उसमें साड़ी पहने हुए थी। गुड़िया के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। शिवम सेठ, पिता का नाम अजय कुमार सेठ, ये ग्राम करवत शक्ति माता मंदिर के पीछे थाना मुगलसराय जनपद चंदौली के निवासी हैं। शिवम सेठ की उम्र है 30 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट सामान्य है। ये जब लापता हुई थी उस समय काले रंग की शर्ट और नीले रंग का कार्गो पैंट पहने हुए थे। शिवम सेठ के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। एक और भी सूचना यहीं से प्राप्त हुई है। मुस्कान गुप्ता, इनके पिता का नाम शिवपूजन गुप्ता है, ये ग्राम जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। मुस्कान गुप्ता की उम्र है 21 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच लगभग, शरीर सामान्य, बालों का रंग काला है, चेहरा गोल है, रंग गोरा है। ये जब लापता हुई थी उसमें काले रंग का टी शर्ट और नीले रंग का जीन्स पहने हुए थी। मुस्कान गुप्ता के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 4 बजे। ये तीनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंशुमन, और दिन में 2:30 पर कहकशा। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर पशुओं में सर्रा बीमारी के कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर मनीष कुमार से सतीश कुमार यादव की बातचीत होगी। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योति सिन्हा का लोकगीत भी होगा। इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनहिया आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर। इसमें चर्चा गीत संगीत

अलावा आप सुनेंगे शैली श्रीवास्तव की वार्ता, बालिका शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा का महत्व। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:00, रात 8:15 पर रसमाधुरी में। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5:00 आप सुनेंगे कुछ बघेली की। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का हुक्म दिया गया है। पुलिस स्टेशन में इतला दर्ज होने की तारीख से 2 माह के अंदर जराइम की तफ्तीश मुकम्मल की जानी चाहिए। मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये तरमीम कानून को मजीद सख्त बनाने और तेज रफ्तार इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए की गई है। दरअसल राज्यसभा ने कौमी इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए कौमी इज्जत की तौहीन की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 भी मंजूर किया है। ये बिल वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करेगा। मरकजी वजीर मुमलकत बराए उमूर दाखला नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम की तौहीन करने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। हज 2027 पर जाने वाले अफराद के नामों का इंतखाब आज कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। इंतखाब का ये अमल मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में किया जाएगा। हज के लिए दरख्वास्त देने वाले हज कमेटी ऑफ इंडिया के सरकारी वेबसाइट पर अपने कवर नंबर का स्टेटस चेक कर सकेंगे। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश से हज के लिए 22,623 इब्तदाई दरखास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती वजीर बराए मुस्लिम वक्फ हज दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि इस बार भी आजमीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएगी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में मुनाकिद होने वाले 2026 दौलत मुश्तरका खेलों में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने मर्दों के 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम किया है। वो इवेंट में तमगा जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 241.5 शेयर मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोगों के नमस्ते, और साथे में गौरी बहन तहु के नमस्ते।
1: नमस्ते चंपा दीदी, तो के भी नमस्ते, और कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोग के भी नमस्ते।
0: ये गौरी बहन,
1: हाँ दीदी,
0: देखा ये मौसम देखा से तो लगत रहा जैसे लगत सावन आज से शुरू हो गल है, कहें कि देखा रिमझिम रिमझिम बरसत है, तो कहीं हवा खूब अच्छा चलत है, तो कहीं देखा धूपो हो जाता ला हो।
1: एकदम सही बात है दीदी। सावन लागत नहीं है, आज से सावन का शुरुआत हो गई है। और हम कहीं ना कि देखा मन तो हरियर रहिबे करी, काहे से
0: बिल्कुल
1: कि अपने बाबा भोलेनाथ का आगमन जे हो गई ला, हो जे दुखो बीमार हुई ना वहू का मन अब हरियरा आ जाए, प्रसन्न हो जाए कि देखा अपने बाबा भोलेनाथ का आगमन हो गई ला। तो इतना
0: बिल्कुल
1: मनई खुश हुई हाँ कि अब सोची हाँ कि अब देखा हमने का कावड़ लेके निकल जाई, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करे जाई जाई, तो बहुत अच्छी बात है। और हम यही कहब दीदी कि देखा वो हमनी के जब ये सावन का बात करत हैं जा,
0: हाँ
1: कावड़ का बात करत हैं जा, घरे से निकले के बात करत हैं जा ना, तो देखा बाजारे में इतना निक लगा था, तरह तरह का कुल दुकान सज गई लई सा, हरियर हरियर चूड़ी मिला था, हरियर कहाँ कहाँ मिला था, देख के एकदम मन खुश हो
0: ई तो
1: जाता।
0: बात सही कहत, साथे में देखा कावड़ का सामान भी कुल मिलत हला, जेकर देखा खरीदारी कुछ भैया लोगन बहनी लोगन पहले से भी करत हैं आ कुछ अभियो कर रहा बन, कहें कि अब आज से लोगन का कावड़ यात्रा शुरू हो गल हला। आ देखा कावड़ यात्रा में देखा दुकाने पर जाते हैं लोगन तो कुछ सस्ता मिलत है तो कुछ महंगा भी मिलत हला। तो एमन देखा हम तो यह कहा कि भैया लोगन से कि अगर कुछ ज़्यादा अगर महंगा मिला था तो ओके अपने सतर्कता से रही, काहे कि मन देखा ठगी भी चल चल रहा हा।
1: ये तो सही बात है दीदी। देखा जन तू कहते हो कि कावड़, देखा खाली कावड़े का बात ना है, मने ही कब्बो अगर खरीदारी करे जाता और बर बजाजरे जाता, अगर ओके लगत था कि हमसे दुकानदार ठगी करत था अगर, या फिर गलत सामान देता, तो ओके आदमी के ओके बोले के चाहिए, वो चीज पे आवाज
0: आवाज
1: उठावे के चाहिए,
0: उठावे के चाहिए।
1: काहे से कि देखा एकरे बदे आदमी ठगी का शिकार हो जाए, जागरूक ना रही अपने बदे, तो ओके आगे चल के बहुत समस्या का सामना भी करे के पड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आ देखा हर एक चीज़ में जैसे कोनो चीज़ होला तो मन देखा मिलावट भी होत होला, जैसे कि कोनो डेट भी चेंज करके तारीख
1: हाँ
0: बदल जात
1: एकदम सही
0: होला।
1: बात है कि कोनो पाकिट का अगर सामान खरीदा था,
0: हाँ
1: बहन लोग हैं अपन जवन जात

0: हैं, हाट बाजारे जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो वो अगर पैकेट का सामान खरीदते हैं तो ऊपर जरूर देखें कि ओकर उत्पादन तिथि का लिखल हो, ओकर समाप्त वाला तिथि का लिखल हो,
1: बिल्कुल
0: तब ले आए। देखें खाली सामान खरीदले का ना हो, ओकरे प्रति जागरूक रखल भी बहुत
1: बिल्कुल
0: जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: काहे से कि अगर आप कुछ गलत सामान लेके आए घरे, ओके बनैली खैली, तो देखा जौन पैसा कौड़ी के नुकसान हुई वो तो अलग है, लेकिन
1: अलग
0: मनई के जौन स्वास्थ्य असर पड़ी ओकर सीधा असर मनई के स्वास्थ्य पे ही पड़ी,
1: बिल्कुल
0: और ओकर
1: बिल्कुल
0: भुगतान भी आप ही के करे के
1: बिल्कुल।
0: होई।
1: आ देखा था ना, आ ज्यादातर देखा पैकेट का सामान अब खाओ पिए वाला भी बाजारे में आ गल हो। पहले तो खुलल मिलतो रहल, तो ऊपर कोनो तारीख नहीं लिखल रहता, मगर अब तो देखा पैकेट में मिलत हला, तो खाए पियल तो ऐत ही पहले बच्चन लोग भी देखा खोल के खा ही लगत हैं। ये नहीं देखा था बच्चा लोगों कैसे देखिए, मगर हमने के जागरूक रहे के चाहिए कि कुछ खरीदे थे तो ऊपर समाप्ति और उत्पादन तिथि जरूर देख ले।
0: और ओकर गुणवत्ता कभी जांच कर ले कि वो सही है कि ना, बच्चन के खाए लायक है कि ना है, तभी बच्चन के देवे, नहीं तो ना देवे।
1: ना
0: और
1: दे
0: देखी अगर कोनो ऐसा सामान लेते हैं और फिर दुकान पे आप लेके गई नहीं, दुकानदार आपसे जब बहस करत है अगर वो सामान के वापस ना करत हवे, तो ओकरे बदे भी तरह तरह के आपका हेल्पलाइन नंबर बनल हवा सा, उपभोक्ता आयोग जोन हेल्पलाइन नंबर बनल है, ओ पर आप अपन शिकायत दर्ज कर सकी ना,
1: बिल्कुल।
0: वहीजन से आपका सुनवाई हुई और आपके ओकर इंसाफ भी मिली।
1: आ देखा जौन ये सब अब चलत है ना, इसमें कांवड़ यात्रा के जैसे कहत हूँ कि दुकाने दुकाने सामान लगल है ना, तो अपन भारत भी देखा ना बहुत जागरूक हो गए हला।
0: अच्छा।
1: हाँ अब मन ही सोचत ना कि जौन हम खरीदे ला तो हम अपने से काहे ना कुछ बना सके, हर एक चीज जैसे कि हो तो घरे में सिलाई बुनाई से लेके हर एक चीज सोचत है कि
0: अरे
1: अपने घरों में
0: दीदी,
1: करे।
0: कहे का मतलब ई है तुहार कि जब हमनी के बाजारे में निकलत हई जा, तो तू देखत हो कि कितना रंग बिरंग का सामान हाथे से बनावल दिखत
1: बिल्कुल
0: हो,
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे ई महसूस होता, ई यकीन होता कि हाँ हमनी के जौन भारत देश है वो आत्मनिर्भर होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आ देखा अब तो दरे दरे मेला भी लगल ला, हस्तशिल्प मेला, ओहो में देखा अपन जैसे बना ज्यादा अगर हो जातला तो वहां पर भी ले जाके अपन बाजारे में उतार सको, जैसे कि कुछ अपन आर्थिक स्थिति में
0: एकरे
1: सुधार
0: देखा दीदी,
1: सकेला।
0: एकर बहुत फायदा भी है, अगर मनई अपने हाथे से कुछ भी बना के ले जाके हाट बाजारे बेचा था, तो ऊ खाली अपन आर्थिक स्थिति ना समझा कि ऊ देश का स्थिति मजबूत करत और
1: बिल्कुल
0: देश के
1: बिल्कुल।
0: विकास में अपन योगदान देत हो।
1: बिल्कुल। आ देखा ओके अगर बाजारे में अगर रख देना तो जौन बाहर से सामान हमारे के भारत में आवत हो ओकर भी कम हो जाए, कि हाँ बाजारे से भी बाहर से भी आए कम हो जाए, अपने भारत को लोग भारत का सामान इस्तेमाल करेला।
0: देखा दीदी, बतकई तो कर रहल जाई तो ई सनेश हो जाए।
1: सुनवाई था
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।

0: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: तो दीदी हमने कहा देखा बात करत रहनी है जा कि कोनो सामान खरीदे जात हैं जा तो बदे कैसे जागरूक रहे के हा, अपन संरक्षण कैसे करे के हा, या फिर आत्मनिर्भर जीवन भारत हो जाता। लेकिन देखा हो हम कहीं ना कहीं एकरे बदे कुल चीज का सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षित भाई।
5: बिल्कुल
4: मन ही अगर शिक्षित रही तो हर तरह से जागरूक रही और कहीं भी ठगी कभी शिकार ना हो, घुसखोरी कभी शिकार ना हो। तो देखा एकरे ही बदे हम एगो नीके का वार्ता लेके आये हैं कि बालिका शिक्षा और महिलाओं के शिक्षा का क्या महत्व है, एक बारे में बतौले हैं शैली श्रीवास्तव। तो बहन लोग एक सुने
6: बालिका शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा का महत्व। नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूं जो केवल महिलाओं या बालिकाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास, सामाजिक समानता और मानवता की उन्नति से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है बालिका शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा का महत्व। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, अर्थात विद्या सभी प्रकार के धनों में सर्वोत्तम धन है। शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यह केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती है बल्कि जीवन जीने की कला, सही निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का बोध भी कराती है। इसलिए जब किसी बालिका को शिक्षा मिलती है तो उसके साथ साथ पूरा समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है और ये हम सभी लोग जानते हैं। एक बहुत ही सुंदर उक्ति है, जब एक बेटी पढ़ती है तो केवल एक जीवन ही नहीं बदलता बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो जाता है। हम इस बात से सहमत करते हैं। भारत की संस्कृति में नारी को शक्ति, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, माँ लक्ष्मी समृद्धि की और माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। ये हम सभी जानते हैं। यदि हम देवी स्वरूप नारी की पूजा करते हैं तो वास्तविक सम्मान तभी होगा जब हम प्रत्येक बेटी को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसीलिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास भी होता है। इतिहास गवाह है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कई महिलाओं ने अपने ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन किया है। आधुनिक भारत में सावित्री भाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोलकर महिला शिक्षा की एक नई शुरुआत की। अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने समाज को यह संदेश दिया है, शिक्षा हर बेटी का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज भारत की बेटियां विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, न्यायपालिका, प्रशासन, सेना, खेल, साहित्य, संगीत, व्यवसाय, अंतरिक्ष तक अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उनकी यह उपलब्धियां यह सिद्ध करती हैं कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। एक शिक्षित महिला ही अपने परिवार की पहली शिक्षक होती है। बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर ही होता है और पहली शिक्षक उसकी माँ, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। यदि माँ शिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों में अच्छे संस्कार, अनुशासन, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वच्छता और शिक्षा के महत्व को सहज रूप से विकसित करेगी। और ये हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग जब ये काम करते हैं तो बहुत आसानी से सफलतापूर्वक हम अपनी इस कमियों को जो दूर करना है वो पा सकते हैं। तो बच्चों को सिखाना ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पर डिपेंड करता है। इसलिए कहा जाता है कि एक शिक्षित माँ एक सशक्त परिवार की नींव होती है। महिला शिक्षा का महत्व केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होता है, इसका सीधा संबंध समाज और देश के आर्थिक विकास से भी है। अतः जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे रोजगार प्राप्त करती हैं, स्वरोजगार को अपनाती हैं, उद्यमी बनती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। आज के डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप भी बदल गया है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल तकनीक और कौशल विकास ने महिलाओं के लिए नए नए अवसर

खोल दिए हैं। गांव की बेटियां भी अब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से नई नई जानकारियां प्राप्त कर रही हैं और अपने सपने को साकार कर रही हैं। फिर भी हमें यह स्वीकार करना होगा, आज भी कई स्थानों पर बालिकाएं गरीबी, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा और सामाजिक रूढ़ियों के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हैं। इन चुनौतियों को दूर करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। परिवार को यह समझना होगा कि बेटी कोई बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ी पूंजी है। उसे शिक्षा देना सबसे बड़ा निवेश है जिसका लाभ आगे आने वाली कई पीढ़ियां प्राप्त करती हैं। यह संदेश महिलाओं को भी समान रूप से लागू होता है। शिक्षा उन्हें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, अपने अधिकारों को समझने और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने की शक्ति देता है। आज आवश्यकता केवल बेटियों को विद्यालय भेजने की ही नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण देने की भी है। हमें उनकी रुचियों का सम्मान करना चाहिए, उनके सपनों को सुनना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। हम सभी अपने स्तर से योगदान दे सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद बालिका की पढ़ाई में सहयोग करके, अपने परिवार व समाज में बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देकर, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध करके, महिलाओं को कौशल विकास और आजीवन शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराकर, ये सब हम लोग भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सरकार पहल करे तभी हम करें, ये हम अपने स्तर से कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो एक स्त्री हैं। आज हमें यह भी समझना होगा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम ही तो नहीं है बस, यह जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। बदलते समय के साथ साथ महिलाओं के लिए नई नई चुनौतियां और अवसर सामने आ रहे हैं। ऐसे में शिक्षा उन्हें समय के साथ आगे बढ़ने, नई तकनीकियों को अपनाने और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रही है। शिक्षा महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता का भी विकास करती है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं ना, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले जहां बेटियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, वहीं आज अनेक परिवार अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह परिवर्तन स्वागत योग्य है, लेकिन अभी भी हमें लंबा सफर तय करना है। जब तक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी हर बालिका विद्यालय नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा प्रयास अधूरा ही रहेगा। यदि हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बेटी को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिले। यह केवल सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी। माता पिता, शिक्षक, मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन कौन अपनी भूमिका अदा कर सकता है अपने स्तर से। माता पिता हैं, शिक्षक हैं, समाज है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और युवा, सभी मिलकर इस परिवर्तन के सहभागी बन सकते हैं। मैं अपनी बात को एक प्रेरक विचार के साथ आगे बढ़ाना चाहूंगी। शिक्षा वह दीपक है जो स्वयं भी प्रकाश देता है और दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। बहुत गहरी बात है। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जहां किसी बेटी के सपने उसकी परिस्थितियों से छोटे ना हो, जहां हर महिला को सीखने, आगे बढ़ने और अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनने का अधिकार मिले। यही सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने बालिका शिक्षा के और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं की जन्म, शिक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है, जिसके तहत समाज में यह संदेश दिया गया कि बेटी केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। यह नीति सभी बच्चों को, विशेषकर बालिकाओं और वंचित वर्गों तक गुणवत्ता पूर्ण, समावेशी और समान शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य रखती है। इस नीति के अंतर्गत कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार और भी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बचत।

0: योजना है। इसके माध्यम से माता पिता अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कौशल विकास तथा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब महिला शिक्षित होती है और आर्थिक रूप से सशक्त बनती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाती है। इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, हर बेटी पढ़े और हर महिला आगे बढ़े और भारत में ज्ञान समानता तथा अवसरों के आधार पर विकसित राष्ट्र बने। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो विश्वास है, उसकी शिक्षा उसका सम्मान, यही है देश की सच्ची पहचान। ज्ञान का दीप हर घर जले, हर बेटी विद्यालय चले, नारी हो शिक्षित नारी हो समर्थ, तभी बनेगा भारत समृद्ध और समर्थ।
1: गौरी बहन,
2: हाँ दीदी,
1: देखा हो कितना निक के एकदम फरिया के एकदम बतेली ना कि पहले सही बात था कि बच्चन नहीं पढ़ पावत ना, तो मगर अब हर महतारी चाहली कि हमार बच्चन आगे पढ़े पढ़े और आगे बढ़े, कौनो बच्चन का पढ़ाई कौनो भी से भी न रुके, काहे कि देखा अब पढ़ाई में जान होला, काहे कि कहीं भी जा तो लोगों का शिक्षा ही सबसे ज्यादा मायने रखत होला। यही से हर लड़किन के और हर महिला लोगन के शिक्षित हो बहुत जरूरी है।
2: सही बात कहलू है दीदी। और देखो हो कहल जाला ना कि जब एगो लड़की शिक्षित होले ना तो उ खाली एगो खाली अपन शरीर लेके शिक्षित ना होले, ओकरे साथे साथे एगो पूरा परिवार शिक्षित हो जाला।
1: बिल्कुल,
2: उ जहाँ जाई तहाँ ओकर आस पड़ोस अपन लड़का फैका जितना हम सबके एगो शिक्षित बनैय। और सबसे बड़ी बात ये होला ना कि जब महतारी पढ़ल लिखल होनी ना तो उ लड़का का नींव जौन होला जौन कहल जाला कि बचपने से मतलब मजबूत हो जाला। काहे से कि छोट लइकन के कहल जाला कि पहली गुरु होनी महतारी।
1: महतारी ये देखा कितना बढ़िया वार्ता रहल ना, बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा का क्या महत्व रहल। शैली श्रीवास्तव एकदम फरिया के बतैली ना। आ देखा हो अगर जब हमने के अंगनैया में ना जब मन मनसा ना होला ना तो नीक नहीं लगला। देखा बहनी लोगन भी जोहत हुई हैं, ये लोगन बस बतियेबा करी हैं कि कुछ गीत गौने भी सुनवाई हैं, तो कहे ना चला गीत सुनवाई दा बहनी लोगन के।
2: तो सुनवाई दा।

0: तो दीदी देखा कितना निकी का गीत रहा हो। कहीं ना कि सावन आ गईला तो नैहरे जाए के मन केकर ना करेला हो।
1: ई तो बात सही कहा
0: अब वैसे ही मन मतलब ई हो गईला कि अब सावन आ गईल है तो नैहरे जाए के है झुलवा झूले के मिली। और देखा बहन लोग के
1: बिल्कुल
0: इतना निकी का गीत सुनवलू है, सुन के बहुत निक लागल और मन प्रसन्न हो गईला। लेकिन देखा वो कुल तो कैलू है निक लागल है, लेकिन अब हम कहें ना कि अब हमार भूख लागत है। ई बतावा कि हम तब से आयल हैं तब से देखत हैं कि कुछ तू अपनी झोरिया में ले आयल हो, बहुत भिनी भिनी खुशबू आवत है। तो ई बतावा खाली मैं कहबे करबू कि खियबे करबू।
1: अरे काहे ना खियाए, पहले बहनी लोगन के बता भी तो दे कि कैसे बनावे के हो, का लेवे के होला। देखा काल हम ना बाजारे गए रही सब्जी लेवे ना, तो माँ ठेला पर खाली बस ज्यादा तर ना भुट्टा वा दिखात रहल ना। तो हमार
0: अच्छा।
1: ननका कस मम्मी ले ला ना, काहे ना चाट बनावा ना एकर। तो हम ले अली है आ सब रही जिदिया लगा कि हम स्कूले जा रहा तो हम चाह में चाटा चाहे।
0: अच्छा।
1: तो ओकरे बदे ना हम देखा दो ठे भुट्टा ले ले ली है और ओके ना उबाल दे ली है।
0: अच्छा।
1: उबाल के ओके छान दे ली है, छान के फिर ओकर जोन दाना दाना कुल अलग कर ले ली है। तो ओकरे बाद फिर हम ना प्याज एक ठे ले ले ली है, एक ठे टमाटर, एक ठे मरचा, काहे कि तीखा भैया बच्चन हैं कैसे तीख खाइए। ओके महीन महीन काट दे ली है, फिर वही में मिला दे ली है। मिलैले के बाद ना मत ऊपर से नमक भयल, चाट मसाला भयल और लाल मिर्चा पाउडर हल्का फुल्का डाल दे ली कि देखे में भी निक लगे। अब मिला दे ली है ना, अब वही हम कहिए कि चलो हम अपने गौरी बहन के भी लेते चली, काहे कोनो हमेशा मंगबा करलिन कि हाँ कुछ लिया आयल हल्का अपने पिटारी में।
0: हाँ।
1: तो अब अपने लइकवो के दे दिली, माँ लइकवो लेके वही गला, बहुत निक लगत रहा। हम तो यह कहब कि देखा हम बनैली, हम खैली भी। अब बहन लोग से कहब कि अपनो खाए, अब बच्चन लइकन के भी अपनो खियावे।
0: देखा बड़ा नीक का तू ले आयल हो रेसिपी। अजवन तू कहत हूं ना कि गौरी बहन मंगवे करेली, तो देखा वो छोट बहन का फर्ज होला अपना बड़ बहन से मांग के खाइल।
1: बिल्कुल
0: हाँ। आ
1: बिल्कुल
0: इतना नीक नीक जब बनेबू तब बहन लोग काहे ना मंगे खाए खाती। अब हम ही नाई, अब देखा कुल बहन लोग से कहब कि चंपा बहन बहुत बढ़िया चाट लेके आई लवी, तब उहो लोग कहिए कि तब तू सबके खियाया। और देखा
1: बिल्कुल
0: जवन मक्का का बात करत रहू है ना कि चाट बड़ा निक लागेला, तो देखा एक खैला का बहुत फायदा भी है। हाँ। जोनी अपन मकई है ना, ये बहुत गुणकारी भी है और अपने गाँव में देहाते में देखा तो बड़ी आसानी से मिल भी जाला।
1: बिल्कुल
0: तो इमें फाइबर, विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होला, जे पाचन में सुधार में सहायता करेला और आँख के सुधार के लिए भी सही रहेला। और
1: बिल्कुल
0: देखा इससे पाचन शक्ति भी मजबूत रहेला, पेट साफ रहेला। हाँ। और जोन आँख का रोशनी है ओकरी खातिर भी बहुत फायदेमंद होला और ज्यादा ऊर्जा होला।
1: बिल्कुल
0: इमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होला तो इससे शरीर के ताकत में मिलेला। और दिल खाती भी बहुत अच्छा है, जैसे कि हृदय का भी बीमारी हो जाता, गंदा ब्लड जैसे कोलेस्ट्रॉल कहल जाला, गंदा खून इकट्ठा हो जाता, तो ओके भी दूर करे में बहुत मदद करेला। और अपने देहाते में तो देखा मकई जब हो जाला खेते खेते ना, तब दुआरे दुआरे गोईठा सुनगाए दिहल जाला और वैसे ही भूज के ऊपर
1: भूज
0: नींबू
1: के
0: नमक लगा के
1: नमक
0: खा, तो वह का एगो अलगे आनंद
1: अलग ही
0: आवेला।
1: आनंद
0: ई
1: रहला।
0: तो है ये कि लड़का कुल देखा था, तो मैंने बाजारे में कुल चाट मिला था तो हमहू के चाहिए, हमहू खाए,
1: बिल्कुल
0: मम्मी बना।

0: आ दीदी देखा हमने के खाए पिए के जौन बात करत हई जा तो ई तो सही है, अपने सेहत और स्वास्थ्य के भी ध्यान रखल बहुत जरूरी है।
1: हाँ ये तो सही कहा, तो बाकी देखत हो ना जैसे मने समय से आई ला ना, अब घड़ियो देखा इशारा कहत हो कि मने का समय हो गया हला, अब बतियात रहा ना तो समय का तो पता नहीं चल रहा, ये होला कितना बतियाई, तो चला चलल जाए।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुनी थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं डॉक्टर ज्योति सिन्हा। इनके स्वर में सुनिए ये कजरी।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप

0: नहीं है।
1: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में एक बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
3: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर एक बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
5: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
3: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरुमध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा।
2: खोल दे आंखें तो महफिल में उजाला कर दे, वो अगर मुस्कुरा दे तो मौसम को गुलाबी कर दे। लफ्ज जितने हैं सब सजदे में गिर जाते हैं, वो जब आंखों से मोहब्बत का इशारा कर दे। रेडियो के तमाम सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा शिखा के साथ। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह जी की इस बेहद शांत और खूबसूरत गजल के साथ। आइए सुनते हैं ये गजल।

धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। फासला नजरों का पल भर में बदल जाता है, तुम कभी खुद को मेरी आंखों से मिला कर देखो। सुनते हैं अगली गजल, जो सीधे दिल के बंद दरवाजों को थपथपाती है।

जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। हंस के मांग ले तो जान भी दे दूं, सोच मत ये दिल तो तेरा ही दिया है मुझे। आइए इस खूबसूरत एहसास में डूबते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की इस मखमली गजल के साथ।

बिछड़ कर फिर मिलेंगे यकीन कितना है, बिछड़ कर फिर मिलेंगे यकीन कितना है, इस ख्याल में ही सुकून कितना है। चले हैं आज महफिल से मगर लौट आएंगे, चले हैं आज महफिल से मगर लौट आएंगे, तुम्हारी यादों का ये मौसम हसीन कितना है। तो आज का ये प्रोग्राम था हमारा कहकशां। अब घड़ी की सुइयां विदा लेने का इशारा कर रही हैं। मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा आकाशवाणी वाराणसी। इसी के साथ अब शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा, मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 4 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 4 बजने को है आरंभ हो रही आज की हमारी दूसरी सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे

के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को

0: जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशन जिनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहाँ भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता
0: जी।
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूं और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर। और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहाँ आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो
0: जी।
1: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
1: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशंस पे जाते हैं, वार्ड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं शीज द वन, वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
1: नहीं देखिए, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी

0: जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को अपने घर को संभालती रही, मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है. इट इज़ लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज़्यादा मुश्किल का मामला है. ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास यू नो जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन. अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है.
1: वाह क्या बात है, क्या बात है. जितनी भी आर्मी वाइफ्स, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम. कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और ख़ास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर हैं, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुँच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है. जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुँचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ. आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन हैं, तो आर्मी मैन हैं, तो आप के लिए ये आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर उस राज्य बहुत ज़्यादा ऐसे इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं.
0: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है.
1: अच्छा.
0: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं. बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं. इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे. दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है. इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं.
1: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं. तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल्स की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर. ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल ख़त्म होते होते कि जाना है तो आर्म्ड फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे ख़राब बात एक ही थी कि मेरे टीचर सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा. दिस इज नॉट डन एज फार एज जहां तक मेरे लिए बात है. भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं. अब वेल मुझे मैं इसमें काफ़ी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज़्यादा बदमाश कोई नहीं था.
1: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं.
0: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे. पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था.
1: अच्छा.
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा.
1: वाह क्या बात है, क्या
0: मतलब आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं.
1: हाँ.
0: क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गईं.
1: क्या बात है, शैतानियां कम हो गईं. मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले
0: बिल्कुल,
1: करती हूँ.
0: बिल्कुल.
1: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है. हम किसी

वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा

0: जग जग तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है। जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं और उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुँचे, ये कहानी ज़रूर सुनाएं।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा।
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हट के खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं ज़रूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था। वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहाँ तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूँ, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्ज़ाम असली, ये तो सब बेकार है। 7 के 7 एसएसबी एग्ज़ाम देने नहीं गए।
0: अच्छा।
1: सो 8 के 8 ने आईआईटी का एग्ज़ाम पर जोर लगाया और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम 7 रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने। और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
1: हम ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर माहौल में हमारे पास चार हम इकट्ठे थे। एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। एक और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था। तो हम 4 थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहाँ हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा और देखा कि

0: फाइनली वो एग्ज़ाम दे रहा है। जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो हमने कहा चलो भाई हम भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्ज़ाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉरपोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया। अच्छा। और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई। और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका CDS एग्जाम क्लियर हो गया है। तो वहाँ से कॉल अप लेटर आ गया SSB का। तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ गए। वहाँ पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफ़ी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
0: अच्छा, अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ GTOs वाला जो काम था वो भी आ गया। तो वहाँ फिर लाइनअप लगी, तो वहाँ पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा।
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली। सो आई हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई। और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस, मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कनक साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन, जैसे आपने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीज़ों को करना चाहते थे, आपने कहा कि शैतानियाँ भरपूर करते थे, शैतानियों से भी ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार, क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में, सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी।
1: अच्छा,
0: बढ़ चढ़ के, बढ़ चढ़ के,
1: क्या
0: जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोलकर निक्कर पहनकर बारिश में भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया।
1: वाह।
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे, तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी।
1: अच्छा।
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था, यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ।
1: अच्छा।
0: कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
1: क्या बात है। वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया, और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया, और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो,

0: पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नज़र आया कि कहीं किसी ने आंख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो तू करेगा। सो दैट इज़ द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूँ कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहाँ हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें ये नज़र नहीं आया कि किसी ने ये कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज़ अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज सिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूँ, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज़ होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप CDS आपने क्लियर किया। CDS क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज़्यादा कीन नहीं थे। क्योंकि देखिए, ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहाँ आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉरपोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपये मेरे को पहली तनख्वाह वहाँ मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो ज़ीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपये महीना वहाँ पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे। अच्छा। आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप ज़ीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकेंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपये थी, मतलब 2800 से भी कम। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूँ ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई।
0: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहाँ से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
1: ये मेरी बदकिस्मती है। अच्छा। कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ।
0: अच्छा।
1: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है।

0: इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा। लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइट्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई रॉइट नहीं हुआ मेरठ में। तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहाँ थे, जहाँ पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन, और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहाँ तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा। लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो वाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा, लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें।
1: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे जैसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे आप खुद एक डेस्टिनी लावर हैं कि किस तरह के से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उसी तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशंस मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज़्यादा।
0: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
1: अच्छा,
0: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूं, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे।
1: वाह क्या बात है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे ही मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग, आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? कर
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे, आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं।
1: वाह क्या बात,
0: मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं मुझे, और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि हर ऑपरेशन मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशन का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
0: देखिए मैं तो यही कहूँगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेन के रहेगा श्रीनगर
1: जी,
0: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहाँ शादी हो गई। सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हवाई श्रीनगर में शादी हो गई।
1: वाह क्या बात है, तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
0: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर से नगर में थे, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड।
1: क्या बात है,
0: श्रीनगर काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
1: वाह क्या बात।

0: बात है, क्या बात है, मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई। और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा। दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी। बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा,
1: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो उन सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूँ, 15,000-18,000 फीट पर जहाँ ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहाँ भाग रहे थे, आप वहाँ दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई। एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ 528 लोग उस दिन मारे गए। मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528वां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए।
0: शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे। वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहाँ पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं।

0: एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
1: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ.
0: अभी तक
1: ये वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है.
0: वाह.
1: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है. और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है. इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी. और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई हैव टू रीलिव. मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ. मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी. एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है.
0: आपने आज निशब्द कर दिया. आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा. और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं. क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे. बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है, और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी. अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में मेरा इसमें अहंकार नहीं है. मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो. देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए.
0: बहुत खूब. यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूँ. एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है. मैं जानती हूँ कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजन लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं. अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, अटलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल. दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा. तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उस एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर.
0: क्या?
1: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो OP ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूं कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर. अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्च्यून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव. ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है. उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए.
0: क्या बात है.
1: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए,

0: कि उसे मालूम है कि आप फायर कहाँ कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतेह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद लिख भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज कामरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल बवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शरेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
0: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत।

धरती के गीत इस कार्यक्रम में सुनिए रेखा सिंह बघेल और मणिमाला सिंह की आवाज में बघेली गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना रेखा सिंह बघेल और मणिमाला सिंह की आवाज में बघेली गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद ये शाम सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं उतरती है, बल्कि अपने साथ कुछ सुकून, कुछ मुस्कुराहटें और ढेर सारी बातें भी लेकर आती है। तो अगर आप भी इस वक्त सफ़र में हैं, ऑफिस से घर लौट रहे हैं, या पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लिया है आपने, या फिर बस चाय की चुस्कियों के साथ कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही वक्त पर हमारा साथ चुना है। और आपके शाम को ज्ञान और मनोरंजन से सराबोर करने के लिए हम आ गए हैं। आज आपके साथ मैं हूँ अर्चना।

0: और मैं हूँ मोनिशा।
1: और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युवाने। तो स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अगले आने वाले जो हमारे समय, हमारा जो सफ़र है, उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, हंसेंगे, कुछ नया जानेंगे, कुछ ज़रूरी मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी करेंगे और सुनाएंगे आपको शानदार सॉन्ग्स भी।
1: तो चाय तैयार है, शाम भी तैयार है, और अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफर इस प्यारे से गीत के साथ।
2: इश्क़ तो

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक

0: सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: दोस्तों कहते हैं कि भारत में अगर किसी मौसम का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है तो वो है सावन। ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं बल्कि एहसासों का मौसम है। पहली बारिश की बूंदें जब सूखी धरती को छूती है तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं महकती, मन भी खिल उठता है। पेड़ों पर झूले पड़ने लगते हैं, कचरी की धुनें गूंजने लगती है, हाथों में मेहंदी सजने लगती है और चारों ओर हरियाली जैसी जीवन में नई उम्मीदें भर देती है।
5: सावन का अपना एक आध्यात्मिक महत्व भी है। ये महीना भगवान शिव की आराधना को समर्पित माना जाता है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, कांवड़ यात्रा निकलती है और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई पूजा और प्रार्थना विशेष फलदायी होती है।
4: बिल्कुल दोस्तों, और आज से ये पावन महीना शुरू हो रहा है दोस्तों। लेकिन अगर हम ज़रा ठहर के सोचें तो सावन में हमें एक और खूबसूरत संदेश देता है। जिस तरह बारिश की कुछ बूंदें सूखी धरती को फिर से हरा भरा कर देती है, उसी तरह ज़िंदगी में प्यार, अपनापन और उम्मीद की छोटी सी फुहार भी रिश्तों पर को और महका देती है। शायद इसलिए कहा जाता है कि सावन सिर्फ मौसम नहीं बदलता, ये मन का मौसम भी बदल देता है।
5: तो क्यों ना इस सावन हम भी एक छोटा सा संकल्प लें, अपने आसपास एक पौधा लगाएं, बारिश के पानी को बचाने की कोशिश करें और सबसे ज़रूरी अपने अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि ज़िंदगी की असली हरियाली सिर्फ पेड़ों में नहीं रिश्तों में भी होती है।
4: तो दोस्तों अगर इस सावन बारिश की पहली फुहार आपके शहर में दस्तक दे दे तो कुछ पल उसके साथ ज़रूर बिताइए। हो सकता है उन बूंदों के साथ कोई पुरानी याद लौट आए या फिर कोई नया याद बन जाए।

0: दोस्तों, जरा अपनी आंखें ही बंद कीजिए और एक पल के लिए कल्पना कीजिए। आज सुबह एक माँ ने अपने बच्चे को हमेशा की तरह प्यार से स्कूल के लिए विदा किया था, लेकिन शाम तक उसका इंतज़ार इंतज़ार ही रह गया।
1: एक बेटी अपनी आंखों में सुनहरे सपने लेकर घर से निकलती थी। उसे लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन ज़िंदगी बदली तो बस उस तरह नहीं जैसा उसने सोचा था। नौकरी की जगह उसे मिली एक कैद और सपनों की जगह डर।
0: ज़रा सोचिए, ये सब सुनकर आपके मन में क्या आया? शायद बेचैनी, शायद डर, या शायद ये ख्याल कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन सबसे डराने वाली बात क्या है जानते हैं? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कड़वी हकीकत है।
0: क्योंकि भीड़ में खो जाना और किसी के द्वारा गायब कर दिया जाना, इन दोनों में सिर्फ एक फर्क होता है। पहले में लोग आपको ढूंढते हैं, लेकिन दूसरे में कई बार कोई आपको ढूंढ ही नहीं पाता।
1: ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का वो सच है जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने से गुजर जाता है, लेकिन हमारी नज़र उस पर ठहर ही नहीं पाती।
0: और यहीं से शुरू होती है मानव तस्करी की वह दर्दनाक कहानी, जो किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की सच्चाई है।
1: दोस्तों, आज 30 जुलाई है, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों आवाज़ों को याद करने का दिन है जो मदद के लिए पुकारती रहीं, लेकिन उनकी आवाज़ शायद किसी तक पहुंच ही ना सकी।
0: दोस्तों, जब हम मानव तस्करी सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि यह अपराध कहीं दूर किसी दूसरे देश या बड़े शहर में होता होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा करीब है। कभी अच्छी नौकरी का झांसा, कभी फिल्मों या मॉडलिंग में मौका देने का वादा, कभी शादी का सपना, तो कभी सोशल मीडिया पर बनी एक छोटी दोस्ती। बस इतना ही काफ़ी होता है किसी की पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए।
1: मानव तस्करी

0: का मतलब सिर्फ किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है, बल्कि किसी इंसान को धोखे, लालच या डर, जबरदस्ती के जरिए उसकी मर्जी के खिलाफ शोषण की दुनिया में धकेल देना है।
1: जबरन मजदूरी, यौन शोषण, बच्चों से भीख मंगवाना, अवैध काम करवाना या फिर अंगों की तस्करी, ये सब उसी अपराध के अलग-अलग चेहरे हैं।
0: दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपके मोबाइल पर एक मैसेज आए, सिर्फ 10वीं पास, महीने की बड़ी सैलरी, रहने खाने की सुविधा और तुरंत संपर्क करें।
1: या फिर कोई अनजान व्यक्ति सोशल मीडिया पर अचानक आपका बहुत ख्याल रखने लगे, क्या आप बिना जांचे उस पर भरोसा करेंगे? आज तस्कर चेहरे नहीं बदलते।
0: वे तरीके बदलते हैं और इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है सतर्क रहने की। तो आप इसे इस तरह बातचीत के अंदाज में लिख सकते हैं, लेकिन सवाल है हम खुद को और अपने अपनों को इस चाल से कैसे बचाएं? जवाब बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है।
1: मान लीजिए आपको अचानक कोई ऐसी नौकरी का ऑफर मिले जिसमें बिना किसी अनुभव के बड़ी तनख्वाह का वादा किया जा रहा हो, या कोई विदेश भेजने की बात कर रहा हो, तो एक पल रुकिए, पूरी जानकारी जरूर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि चमकते हुए सपनों के पीछे कोई अंधेरा सच आपका इंतजार कर रहा हो।
0: और हाँ, अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या दूसरी कागज जरूरी, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे न छोड़ें।
1: आजकल सोशल मीडिया पर दोस्तियां भी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन याद रखिए, स्क्रीन के उस पार बैठा हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, इसलिए भरोसा करने से पहले परखना बहुत जरूरी है।
0: और अगर कभी आपके आसपास कोई बच्चा जबरन काम करता दिखाई दे, कोई लड़की डरी सहमी नजर आए, या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कहीं ले जाया जा रहा हो, तो चुप मत रहिए। अपनी एक जागरूक नजर, एक सही समय पर उठाया गया कदम और एक छोटी सी सूचना किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है।
1: क्योंकि आपकी एक आवाज़ किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। दोस्तों, किसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका नाम नहीं, उसकी आज़ादी होती है, और जब किसी से उसकी आज़ादी ही छीन ली जाती है।
0: तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हारता, एक परिवार टूटता है, एक बचपन बिखरता है और कई सपने हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं।
1: इसलिए अगर कभी आपको किसी की आंखों में डर दिखे, किसी की चुप्पी सामान्य लगे या कोई मदद मांग भी ना पाए, तो बस इतना याद रखिए, हर चीख आवाज़ बनकर नहीं निकलती, कुछ चीखें सिर्फ आंखों में दिखाई देती है। उन्हें पहचानिए, क्योंकि हो सकता है आपकी संवेदनशीलता किसी के आज़ादी की उम्मीद बन जाए।

0: अच्छा अर्चना, एक बात बताओ, अगर किसी को अपनी पसंद का सिर्फ एक ही गाना जिंदगी भर सुनने की इजाजत मिले तो तुम कौन सा गाना चुनोगी?
1: अरे ये कैसा मुश्किल सवाल है। एक गाना मेरी प्लेलिस्ट ने अगर ये सुन लिया तो वो मुझसे रिश्ता ही तोड़ देगी भाई।
0: वैसे सच कह रही हूँ, आजकल तो लोग मूड के हिसाब से गाने बदलते हैं। सुबह अगर कुछ और सुना है मॉनसून के हिसाब से तो शाम को कुछ और सुनेंगे, और बारिश हो जाए तो प्लेलिस्ट अपने आप ही बदल जाती है।
1: बिल्कुल मोनिशा, और कुछ लोग तो इतने बड़े म्यूजिक लवर होते हैं कि गाना सुनकर ही बता देते हैं, ये वाला तो मेरी लाइफ का एंथम है।
0: और वैसे ये बताओ, तो अगर मान लो कि तुम्हारे प्लेलिस्ट में कोई एक ऐसा गाना हो जिसे तुम बार बार सुनना चाहोगे तो वो कौन सा होगा?
1: देखो, गाना सिर्फ एक अच्छा होना जरूरी नहीं होता, उससे कोई याद जुड़ी हो, कोई एहसास जुड़ा हो, तब जाकर वो दिल के और भी करीब हो जाता है।
0: तो जरा देखिए कि तुम्हारे प्लेलिस्ट में ऐसा कौन सा गाना है जिसे तुम सुनते ही बस कहती हो कि यही है।
1: बिल्कुल, अब ज्यादा बातें नहीं, क्योंकि इंतजार जितना बढ़ेगा मजा उतना कम हो जाएगा।
0: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आज की इसकी पसंद की वो सॉन्ग जो ये हमेशा सुनना पसंद करती है।
1: इश्क़ की धुन।

0: वाह अर्चना, मानना पड़ेगा तुम्हारी प्लेलिस्ट में ये सॉन्ग सच में बहुत लाजवाब है। अगर कोई इसे बार बार सुनना चाहे तो बोर तो नहीं होगा।
1: बिल्कुल मोनिशा, जैसा कि मैंने कहा था, उम्मीद करते हैं दोस्तों मोनिशा की तरह आपको भी मेरी पसंद का ये गाना पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज का हमारे यूथ डायरी में कौन सा वो दो शब्द हैं जो हमारे शब्द कोश में वृद्धि कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारा आज का हिंदी का शब्द।
1: तो आज का हमारा हिंदी शब्द है स्वायत्तता, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस आयत्त, अपने अधिकार में होना। इसका अर्थ है स्वशासन। आप इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार भी कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए।
0: वाह, और आज का जो हमारा अंग्रेजी का शब्द है वो है डिसर्न, जिसकी स्पेलिंग है DISCERN। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से परखना, सही और गलत में अंतर पहचानना, या किसी बात को गहराई से समझना। यानी हम कह सकते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये समझ जाना, यही तो है डिसर्न। और इसकी अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो है आइडेंटिटी या डिटेक्ट करना। और सेंटेंस फॉर्मेशन हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, अ वाइज पर्सन कैन डिसर्न द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड इल्यूजन। यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति सच और भ्रम के बीच का अंतर पहचान सकता है दोस्तों। और ये दो शब्द अपने डिक्शनरी में जरूर ऐड कर लीजिए, आपके बड़े काम के आ सकते हैं।
1: क्या बात है मोनिशा, तुमने तो सच में बहुत काम के शब्द बताए। पर अब एक बात बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो कल समाचार होगा और कुछ वर्षों पश्चात यही इतिहास में परिवर्तित हो जाता है।
0: बिल्कुल, और इतिहास याद है कि अपने दोस्तों को भी बताना जरूरी है ना कि हमारे आज के दिन इतिहास में कौन सी वो

0: घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो बिना देरी के बताते अपने दोस्तों को।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज ही के दिन 1886 में 30 जुलाई को मित्तू लक्ष्मी रेड्डी जी का जन्म हुआ, जो कि भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थी।
0: दोस्तों आज ही के दिन 2023 में इसरो ने PSLV-C56 से 7 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। और दोस्तों इसी के साथ अब उसकी बारी है जिसका इंतज़ार आपको बहुत ही बेसब्री से रहता है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे।
1: हाँ, होगा भी क्यों नहीं, आखिर ये हमारे श्रोताओं को देता है मौका सीधे हमसे जुड़ने का। इसलिए हमारे प्रश्नों के सही जवाब देकर जो
0: हमारे दोस्त जो विनर्स बनते हैं उनको मौका देता है। तो चलो बिना देरी के बता देते हैं आज का प्रश्न, पर सोचते हैं उससे पहले क्यों ना हम कल का हमने जो प्रश्न किया था वो बता दे और जो विनर्स हैं उनके नाम भी अनाउंस कर दे।
1: बिल्कुल मोनिशा। तो दोस्तों, कल हमने आपसे प्रश्न किया था, अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के तहत जो योजना चलाई गई थी उसका वो कौन सी है। तो उसका उत्तर है दोस्तों, संबल, जो कि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए चलाई गई थी।
0: और जिन साथियों ने सही जवाब दिए हैं उनका नाम है चंदा चंदौली से, इसी के साथ हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपललोड, सरगांव, छत्तीसगढ़ से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बारी है आज के प्रश्न की, तो ध्यान से सुनिएगा हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, अजात शत्रु नाटक के रचयिता कौन है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, अजात शत्रु नाटक के रचयिता कौन है।
1: और दोस्तों, इस सवाल का जल्दी से उत्तर देकर बन जाएगी आप भी विनर।
0: और आपको पता है ना कि इसका आंसर कहाँ भेजना है। अगर नहीं पता है तो हम फिर से बता देते हैं, तो आपको इसका आंसर हमारे इंस्टा आईडी youth_AIR वाराणसी पर भेज सकते हैं, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है youth_AIR VNS@gmail.com। और जब तक आप हमें आंसर भेज रहे हैं तब तक आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: आप में से कुछ ऐसे भी युवा हैं जो रोजगार के लिए प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं कि तो चलिए फिर बताते चलते हैं आपको आज की रोजगार सूचना।
1: बिल्कुल दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्ती 119 पदों के लिए आयोजित की गई है और RRB आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इनकी आधिकारिक वेबसाइट rrb.government.in पर।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों ये तो था रोजगार सूचना। इससे पहले आपको बताया कि हम आगे आपसे क्या बातचीत करने वाले हैं, उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: अनुषा, जब हम समाज के हर वर्ग के विकास की बात करते हैं तो एक ऐसा चेहरा अक्सर छूट जाता है जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकता।
1: बिल्कुल, और वो है हमारी छोटी नन्ही बच्ची। अक्सर हर गलियों, चौराहों या सिग्नलों पर ऐसे बच्चे को देखते हैं जो या तो बेघर हैं, अनाथ हैं, या बहुत कम उम्र में ही जिंदगी से जूझ रहे हैं। हम देखकर उनको अफसोस जताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
0: हाँ, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ अफसोस जताने से काम चलेगा? सरकार ने तो इनके लिए बहुत बड़ा ढांचा खड़ा किया हुआ है, जिसे हम मिशन वात्सल्य के नाम से जानते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और वात्सल्य का तो मतलब ही ममता और प्यार होता है। ये योजना मानती है कि बच्चे ही की सही जगह अनाथालय नहीं बल्कि एक परिवार का साया है, इसलिए इसमें फॉस्टर केयर यानी किसी दूसरे परिवार में देखभाल और गोद लेने की प्रक्रिया पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है।
0: और पता है मोनिशा, अगर कोई परिवार आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है तो सरकार उन्हें भी मदद देती है, ताकि कोई माँ बाप गरीबी की वजह से बच्चों से दूर ना हो।
1: और जिसका कोई नहीं है उसके लिए तो शेल्टर होम और चिल्ड्रंस होम है ही।
0: पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आम जनता को ऐसा कोई बच्चा दिखे जो मुसीबत में हो या जिसे मदद चाहिए, तो वो क्या करें?
1: अरे बहुत आसान है, कोई कागजी चक्कर नहीं काटना, बस एक नंबर याद रखना 1098। यह 24 घंटे चलने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन है।
0: बस एक फोन मिलाइए और जिला स्तर पर काम कर रही जिला बाल संरक्षण इकाई तुरंत उस बच्चे तक पहुंचकर उसकी सुरक्षा, पढ़ाई और रहने का इंतजाम करती है।
1: मतलब देखा जाए तो बातों बातों में ये बात सीधी है। 15 सूत्री कार्यक्रम हो या फिर मिशन वात्सल्य नीतियाँ अपनी जगह हैं, पर जब तक हम और आप मिलकर इस पे अपने सहयोग नहीं देंगे तब तक ये कार्यक्रम भी उतना सफल नहीं होगा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे किसी कार्यक्रम के अगले अंक में। आज आपके साथ ही मैं मोनिशा
0: और मैं अर्चना।
1: हमें दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: वाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश कैले। लोकसभा काली विधेयक पारित कर दिले रहल।
2: इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ए बीचे सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के नीट पेपर लीक मामला के लेके जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान

0: रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारन के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देले हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर जिला में 692 करोड़ रुपया के 268 परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री अपने संबोधन में विकसित भारत बदे विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण के दिशा में मिल के काम कैले का अपील कैले।
1: मैं आपको आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी।
0: आज उसे पवित्र सावन महीना शुरू हो गई है। सावन महीना के पहला दिन श्रद्धालु भगवान शिव का पूजा अर्चना कर रहा है। प्रदेश के सज्जो प्रमुख शिव मंदिर में श्रद्धालु लोग दर्शन पूजन कर रहे बाटे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर बा।
2: बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। धाम में आने वाले भक्तों का पुष्प वर्षा और रेड कारपेट के साथ स्वागत किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गौरी केदारेश्वर, तिल भांडेश्वर, महामृत्युंजय तथा बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: सावन महीना के पहला दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन करके प्रदेश के सुख समृद्धि और जन कल्याण को कामना कैले। श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ विश्वभूषण मिश्र बतौने की ओजा श्रद्धालुओं के सुविधा और सुरक्षा बदे खास इंतजाम कैल गैल बा।
3: जो हमारा एक मानव संचालन प्रक्रिया हमारे तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था दिव्य की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, वायरस वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई है। हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, साथ ही सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है, वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
0: सावन महीना के साथ ही आज से सालाना कावड़ जत्रो शुरू हो गई, एक खातिर पुरहर इंतजाम कर गई बा।
4: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह कहले हमें कि प्रदेश सरकार धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व वाले जगहों के पर्यटन से जोड़ के ओकर पुरहर विकास करी। आज वाराणसी में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता लोगों से बतियावत वहां के जानकारी देनी। पत्र सूचना कार्यालय को तथ्य जांच इकाई सोशल मीडिया पर वायरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फर्जी इस्तीफा का खंडन कैले हो। इकाई कहले बा कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐसा कोनो चिट्ठी न तो जारी कर गई बा और न तो ओपर दस्तखत कर गई हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शीर्ष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे और रात्रि 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा पशुओं में बीमारी लक्षण और बचाव इस विषय पर डॉक्टर मनी

रमेश कुमार से बातचीत और साथ ही साथ आप सुनेंगे डॉक्टर ज्योति सिन्हा का गाया लोकगीत भी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे शाम 7:31 पर।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए, कल यानी 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे और संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर दिन 12:45 पर और सुबह 7:31 पर सुनिएगा विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार वादन। गैर फिल्मी गीत और गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। अनुभव खेती में इस विषय पर सुनिएगा बातचीत पारसनाथ मौर्य की। अलावा इसके सुनिएगा विदुषी सुचरिता गुप्ता का गाया लोकगीत भी। श्रोताओं, इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 और दिन 1:45 पर भी।

युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर सिने दर्पण यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना के अलावा आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर और बहनें सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहनें सुनेंगी फोन इन कार्यक्रम हरियाली से खुशहाली और साथ ही साथ आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी। सुगम संगीत में दिन 12:30 पर सुनिएगा शिल्पा बोस के गाये गीत। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का प्रसारण समय होगा दिन 11:00। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम मधुरी में आप सुनेंगे सुबह 8:40 पर और गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण समय होगा सुबह 7:00।

श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 पर गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना का प्रसारण समय होगा सुबह 6:10 पर और खेती की बातें इस कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर सुनिएगा मूंग की खेती इस विषय पर दिनेश कुमार सिंह की दी गई जानकारी। तो श्रोताओं ये थे आज के शीर्ष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में एक विवरण।

0: डायल कीजिए
1: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।

0: मदर इंडिया फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से ये समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदि वन्दे मातरं गीताय वैधानिक संरक्षण विधेयकः पारितंगतः। लोकसभायां कार्याचरणं च स्थगितम्। प्रश्नपत्र कदाचार निरोधाय संशोधन विधेयकः राज्यसभायां विचाराधीनः। दिल्ली छात्र प्रदर्शने द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षितं रक्षयितुं सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशः। महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अति वृष्टिपरा रक्त संचेतना उद्घोषिता ऋतु विज्ञान विभागेन। अपि च ग्लास्गो राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य कुंत प्रक्षेपकाः नीरज चोपड़ा रोहित यादवः यशवीर सिंहश्च अंतिम चरणे प्रविष्टवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण विधेयकः 26,2000 पारितः। गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्द रायेण संशोधनार्थम् अयं विधेयकः उपस्थितः।

0: पैलेटगन इत्यस्य प्रयोगार्थम् अधिकृताः सन्ति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य सहैव न्यायाधीशयोः जायमाल बागची वी मोहन इत्येतेषां पीठिकया दिल्ली सर्वकाराय अपि आदिष्टम् यत् विरोध प्रदर्शनेषु ये भुशुण्डिकया व्रणिताः अभवन् तेभ्यः उत्तम चिकित्सा सौविध्यं प्रदातव्यमिति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्य महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अतिवृष्टेः संभावनां प्रकटय्य रेड अलर्ट इति रक्त वर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेनानेन आगामि दिनद्वयाभ्यन्तरे अरुणाचल प्रदेशे केरल माहे क्षेत्रेष् राजस्थान राज्ये च मेघ गर्जन विद्युत्पातं समेत्य अतिवृष्टेः पूर्व सूचना प्रकटीकृता। उत्तर पूर्व भारते अपि आगामिषु द्वित्रि दिनेषु तीव्र प्रभंजन सहित विद्युत्पातेन सह प्रबल वृष्टिः सेत्स्यति इति विभागेन अनुमानितम्। अत्रांतरे राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यामपि आगामिषु द्वित्रि दिनेषु मेघ वर्षणस्य संभावना वर्तते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां आईएएसवी त्रिवेणी इत्याख्यस्य सर्व महिला नौकायान अभियान दलस्य सदस्याभिः सह संवादम् अकरोत्। तासां चाद्भुताम् उपलब्धिम् अदम्य संकल्पं च भूरिशः प्रशंसन्स। अवसरेऽस्मिन् रक्षामंत्री अवदत् यत् तासां साफल्यपूर्णं सागर तरण अभियानं राष्ट्राय गौरवस्य विषयः वर्तते। श्रीसिंहः प्रोदीरितवान् यत् दलस्य एषा अलौकिकी उपलब्धिः वर्तते।
1: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: पाकिस्तान अधिकृते जम्मू कश्मीरे सोमवासरे पाक सुरक्षा बलैः शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कारिणां विरुद्ध्य नृशंस कार्याचरणं पश्चात् अद्य चत्वारिंशत् जनानां निधनानन्तरम् अपि उग्र विरोध प्रदर्शनं निरन्तरं प्रवर्तते। जेएएसी इत्याख्याया संस्थया सम्बद्धाः सामाजिक माध्यम संकेताः आक्षेपम् अकुर्वन् यत् पाक सुरक्षा बलैः प्रदर्शनकारिणाम् उपरि घातक शस्त्राणि प्रयुक्तानि। जेएएसी संस्थया संयुक्त राष्ट्र संघाय अन्ताराष्ट्रिय मानवाधिकार संघटनेभ्यः च साग्रहम् आवेदितं यत् ते अस्मिन् विषये शीघ्रमेव हस्तक्षेपं कुर्युः। ग्लास्गो नगरे आयोजितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य प्रसिद्धः कुन्त प्रक्षेपकः नीरज चोपड़ा स्वस्थानं सुरक्षितम् अकरोत् इति वार्ताः।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम।
1: का हाल चाल बहुत दिन भैया।
0: जितन भैया देखा हाल चाल तो खेती किसानी का ठीक बा हो। देखा भाई तू तो धान उन लगा ले हो, खाद उत तो
1: हाँ
0: छिड़क ले हो।
1: हाँ एकदम एकदम भैया, समय पे सब कुछ अच्छा रहा ना।
0: भाई समय पे देखा कोनो भी किसान मनई होला ना, अगर समय पे कोनो काम जब होत हो तो देखा कहीं ना कहीं इससे हमने के फायदा मिलल जाला।
1: कहने भी है, बहुत फायदा मिलल ला। देखा हो समय का बात कैला तो देखा अपन जोन खेती किसानी हो ना, अगर देखा भाई समय पे अगर एक करत हुआ समय पे हर चीज़ तैयारी होत हो तो अच्छा मुनाफा होला और आमदनी होला। और किसान भाई हमने सभी भाई लोगन का यह सहायता हो, यही से घर परिवार देखा हमने के चला।

0: वाला किसान भाई थे लोग उनका।
1: जितन भैया देखा, अब कुछ दिन में ना बरसाती वाला सब्जी भी लगा थे। अब बरसाती का सब्जी बड़ा तेजी से लगा था, नेनुआ करेला तमाम सब्जी लगा था। लेकिन देखा यही में जौन हो ना, जैसे कितना किसान मनई जौन होलन भाई, गरीब घरे का हूँ, जेकर पल्ले आर्थिक सहायता नहीं हो खेती में लगावा के, दो पैसा कहाँ से लगा पाई, तो ओकर खेती ना कहीं से बिगड़ जाला। लेकिन हम कहला ना कि ई सब चीज के पहले ही सोचते हुए ओके जौन है पहले ही से अपन व्यवस्था मजबूत रखा के चाहिए।
0: सही कहला। देखा हो, जैसे कहला ना, कुछ किसान करा चाहलन, मतलब उनके अंदर हुनर हो और जज्बा भी हो कि हम खेती बड़ा बढ़िया से करी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर अपन किसान भाई उस चीज़ के ना कर पौतन। तो वो भी चाहना कि हमारा आमदनी बढ़े, भाई खेती हम मन से करी,
1: कहे नहीं।
0: अच्छे से करी, लेकिन कर ना ही पौतन।
1: देखा बात एकदम सही कहला है जितन भैया।
0: दीना भैया।
1: कौनो भी किसान होलन, चाहे हमारे जैसे कौनो भी किसान भाई साथी हो भाई, देखा कोई ना चाहला कि हम कौनो रोजगार ना करी, सब चाहला कि हम कौनो ना कौनो रोजगार करी भाई, चाहे कौनो पंचायत हो चाहे कहीं भी हो। सरकार भी चाहला कि कौनो संदेश के माध्यम से भाई इनके हर चीज़ बतावल करी हम,
0: कहे नहीं।
1: कि समय समय पे का लगावे के चाहिए, ताकि आवे वाले समय में जौन भी साग सब्जी लगा ओकरे बदे ओके कोनो दिक्कत ना हो। तो यही आज देखा ना जितन भैया, देखा आज हमनी के ना कृषि में सहायक जौन बैंक योजना होली ओकरे बारे में हमनी के बात करल जी।
0: जरूर बात करल जाई। देखा जौन कृषि में सहायक बैंक योजना के बारे में बात कीला गया ना, देखा हो अपन किसान भाई जौन हो ना, अपने गांव गिराव अगल बगल अगर कर्जा लेत हुआ भाई कि हम अपन खेती अच्छे से कर सकें, जिन्हें से अपन आमदनी बढ़ा सकें, तो वो बदे बड़ा परेशान रहना। और जौन कहलाई कृषि में सहायक बैंक योजना जौन हो, इकरे माध्यम से देखा हो कि कम ऋण में, कम ब्याज में ऋण मिल जाला।
1: जितन भैया बात देखा एकदम सही कहला हा। इमें ना ये जौन बैंक हमने कहो, जैसे किसान भाई जे गरीब बा, जे कि कौनो सहायता ना मिल पावत बा खेती करे बदे, तब वो ये सब बैंक से जाके लोन ऋण ले सकला, कम ब्याज पे ज़्यादा कमाई करके ओके भर सकला। हाँ जैसे मैं देखा हमने के जैसे ना सरकार जो ना किसान भाई के 2-2 हज़ार रुपया जो खाते में भेजत बा, कितना कितना बढ़िया सहायता मिलत
0: अरे
1: बा।
0: भैया, अगर उस समय पे मिल जाए ना, अगर बुआई वाई करत है, जैसे कहा भाई रोपनी भइल है, भाई रोपनी आई है तो उन्होंने को तो चाहिए, और खाद बिया हो और
1: कीटनाशक हो,
0: कीटनाशक
1: ये
0: दवाई
1: सब
0: हो,
1: खरीदे
0: हाँ
1: बदे
0: कहाँ
1: भाई।
0: से, मतलब तो ये सहायता मिल जाला सरकार द्वारा, तो बड़ा अच्छा हो जाला, जोने से खेती आदमी अच्छे से कर लेला।
1: देखा यही में ना जैसे कई ठे रोजगार भी हो, डेयरी हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, मत्स्य पालन हो, मधुमक्खी पालन, तमाम ऐसा कई ठे रोजगार है जे कि किसान भाई लोग अपन अपना के जौन हो रोजगार कर सकलन, दो पैसा कमा सकलन, आमदनी कर सकलन, घर परिवार भी चला सकलन।
0: सही कहला दीना भैया। देखा जैसे बात कहला ना कि डेयरी, बकरी पालन चाहे मधुमक्खी पालन, तमाम ऐसा चीज़ है भाई जेकर जैसा योग्यता जौन चीज़ अपन करे चाहे तो ई कर सकला, तो ओकरे बदे जौनी बैंक हो ओकरे माध्यम से देखा हो उनके ऋण मिल जाला, मतलब कम ब्याज पे उनके ऋण मिल जाला, तो उसे का होला अपन किसान मजबूत बनला।
1: काहे नहीं, देखा खेती की जरूरत के हिसाब से जब पैसा मिला ला ना, तब देखा दिल एकदम गदगद हो
0: अरे
1: जाले,
0: काहे नहीं भैया।
1: और यही में ना कोनो प्राकृतिक हानि जब हो जाले तब बड़ी चोट पहुँचे ले। लेकिन सरकार ओके ऋण के माफ भी कर देवे ले,
0: काहे नहीं
1: ताकि
0: भैया।
1: किसान भाई लोगन के ना सुविधा भी बराबर मिलल करे, हानि भी कहीं से ना हो, एकरे लिए सरकार लेके बहुत चिंतित रहे ले।
0: अरे यह नहीं देना भैया, समय पे अगर भुगतान करल किसान अपन न, तो ब्याज में बहुत सरकारी राहत मिलला। और जरूरत के हिसाब से, और यह नहीं फसल उत्पादन के खर्च में आसानी से पूरा भी हो जाला।
1: काहे नहीं, अगर सही तरीके से तू सही ढंग से अगर खेती करत हुआ, मान ला कि बैगन लगा लेला, बैगन का खेती कर लेला, अगर सही तरीके से अगर उनमें मुनाफा हो गल, तो भाई ऋण जो लेले हुआ उसके भरे में भी तो आसानी मिली।
0: एकदम भैया, अगर ऐसा व्यवस्था अगर किसान भाई लोगन के मिल जाए, तो समझ ला कि उनके चेहरे पे एकदम मुस्कान रही, वो समझ ला प्रफुल्लित रही।

0: तो ई जौन है जितन भैया, ये बैंक लाभ लेवे में दे किसान लोगन के कहा जाए के चाहिए हमने के?
1: देखा हो दीना भैया अपने किसानन के ना, देखा एक चीज ये हो जागरूक भी बनक पड़ी। अगर जागरूक न बनबा तो एक लाभ न ले पीबा। जैसे कहल गला ना कि कुआं के पास तोहाँ जाए पड़ी, कुआं तोरे पास ना आई, वही तरीके से भैया हो बैंक में जाए पड़ी अपने, मतलब कौनो भी सरकारी बैंक हो वहाँ गईलन भाई, वहाँ ऋण लेवा बदे देखा जरूरी जो दस्तावेज हो आधार कार्ड हो गल, पैन कार्ड हो गल, मतलब जहाँ जैसन आवश्यक हो, निवास प्रमाण पत्र हो गल, जमीन का कागज भाई जरूरी हो, खेती से जुड़ल दस्तावेज रहे, बैंक पासबुक रहे, और पासपोर्ट साइज फोटो, और एक बात और ना भी है मोबाइल नंबर जरूरी हो,
0: यह
1: काहे से वही
0: नहीं,
1: पे ओटीपी आई।
0: बहुत जरूरी। देखा इतना बढ़िया बात बतैला है ना कि किसान भाई लोग सुन के एकदम खुश हो गलियन। और अगर ज्यादा जानकारी लेवे के हो तो बगल में कहीं जनसेवा केंद्र हो वहाँ चल जा जितन भैया, और वहाँ जाके ना उन लोग से राय ले ले, वो लोग वहाँ जाके फिर रास्ता वो लोग बता दे वाला।
1: वह नहीं हो ब्लॉक पे अगर चल जाते हैं किसान अपन ना तो हुई जानकारी देवल जाला। तो दीना भैया देखा हो बड़ा पते का बात बतैला है, और ऐसे अपन किसान बहुत जागरूक बनियन।
0: जितन भैया, हम तक कहेला कि जितना किसान जागरूक होलो उतना हम जानेला कि खेती किसानी में लाभ होले, और लाभ जब हो जाले ना तो किसान का दिल देखा एकदम गदगद हो जाले।
1: तो देखा हो आगे तो बात बत कहीं होता रही, तई हई संदेश हो ते अपने किसान भाई के सुना दो।
0: सुनवाए दे, सुनवाए दे।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जितन भैया,
2: हाँ दीना भैया,
1: हम कभी कभी देखले ही ना हो, जब किसान भाई लोग, जैसे कि अगर कोनो प्रोग्राम सुनत हुआ, अपना प्रोग्राम सुनत हुआ, ठीक है, ओ में जैसे ही सनेसा जाला ना, खटिया पर से उतर के थोड़ा देर चल जिये, लेकिन ये ना हम तो कहम ना कि सनेसा कभी छोड़े के ना चाहिए।
2: नहीं हो
1: का पता कि उमे कोनो बढ़िया चीज मिल जाए सुनने के।
2: हाँ, जरूरी जानकारी मिल जाए। और देखा ही तो सनेस का बात हो गई, लेकिन अपने पंचायती में का बतकई हुई?
1: देखा जितन भैया, आज के पंचायती में ना पशुओं में जो सर्रा बीमारी होला, ओकर का कारण है, ओकर लक्षण और बचाव का है, ये बतकही में डॉक्टर मनीष कुमार और सतीश कुमार यादव भैया बतकही करत हुन। तो किसान भाई लोगों के सुनवा दो भैया।
2: सुनवा दो भैया।
3: आज हम उनके बीच में आयल हैं डॉक्टर मनीष कुमार। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हुए पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकच्छा मिर्जापुर में। आज हमने लोग डॉक्टर साहब से जानल जाए कि जो उन पशुओं में सर्रा रोग होला, ओकर कारण का है, उमे का लक्षण दिखी और वो रोग से बचाव कैसे कर जा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमने कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
4: धन्यवाद आपका।
3: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के सबसे पहले आप ही बताएं कि सर्रा रोग है क्या चीज?
4: ये सर्रा रोग एक पशु में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जो इसके खून में होता है।
3: अच्छा।
4: और इसमें जो होता है मेनली एक प्रोटोजोआ होता है जो ब्लड में ट्रिप्सोनोमा इवांसी के नाम से जाना जाता है, और वो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है। और यह रोग अपने देश में नहीं, केवल ये जो है बहुत सारे, जैसे अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, और भी कई देशों में ये पाया जाता है। भारत में यह रोग विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अधिक देखा जाता है, जहां पशुपालन किसानों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। उत्तर भारत में जलवायु मानसून के दौरान बढ़ने वाले खून चूसने वाले मक्खियों तथा बड़ी संख्या में दुधारू पशुओं के कारण सर्रा रोग का संक्रमण अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह मुख्यतः घोड़े में, खच्चर में, ऊंट में, भैंस में, गाय तथा हिरण जैसे बड़े स्तनधारी पशु

0: को संक्रमित करता है। यह परजीवी के कारण सर्रा नामक रोग होता है जो अफ्रीका, एशिया तथा दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाने वाला रोग है। प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों में हजारों पशुओं की मृत्यु होती है, जिसका मेन कारण जो होता है ये ट्रिप्सोनामा इवांसी होता है, और ये अलग अलग तरह के मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है।
1: तो जैसे कि डॉक्टर साहब आप बताओ थे कि मक्खियन से होता ही रोग, और जैसे कि आप विश्व स्तर पर बताओ थे जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, चाहे अपनी एशिया महाद्वीप हो गई,
0: जी
1: तो इका मतलब एक कुछ इलाज है, और इलाज से पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अगर ये रोग फैलत है तो एक कारण का है।
0: इसका मेन कारण ये होता है कि जो मक्खी हमारे आसपास होते हैं, जो जल जमाव होता है उसमें, उसके कारण बहुत सारे मक्खी का संख्या बढ़ता है।
1: अच्छा।
0: और मच्छर का संख्या बढ़ता है, तो उसमें अलग अलग तरह के मक्खी होते हैं जो पशु को काटते हैं, डायरेक्ट उसका खून चूसते हैं, और वो एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट भी करते हैं। तो इसीलिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि मक्खी कम से कम हो, साफ सफाई हो, और जब भी इसका कोई लक्षण दिखता है तो तुरंत जो है कोई जो उसके विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, और नहीं तो क्या होता है ये फैलता ही जाता है।
1: जैसे कि आप पशु में बताओ तो कि गाय में, भैंस में, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ता, जी जो भी लोग पलले हों या रखले हों, तो इन ये में होता है।
0: हाँ जी, इन सारे जानवरों में ये होता है।
1: अच्छा, ये संक्रमण फैले लगा का अगर पशु एक दूसरे के लगे होंगे, जैसे मान ली कोनो पशु के हो गए दूसरे उकरी लगे बदल है, तो का ओह में ये अपने से खुद से फैल जाए कि एक फैले का कारण का है?
0: इसका फैलने का कारण मेनली जो है मक्खी है। वो क्या होता है, एक पशु में हुआ तो एक मक्खी आएगी और उसको काटेगी जिसको इन्फेक्शन है, और वही मक्खी फिर से जाएगी और जो स्वस्थ पशु है उसको काटेगी, तो वो इसको उससे ट्रांसमिट करती है।
1: अच्छा।
0: तो हाँ, ये जो है क्योंकि ब्लड का प्रोटोजोआ है, ये ब्लड में इन्फेक्शन फैलता है, तो उसका ब्लड जो है जब दूसरे को काटता है तो उसके द्वारा फैलता है। तो इसीलिए जिस भी पशु को अगर होता है तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जो पशु बीमार हैं उसको वहां से अलग करें, और कोशिश करें कि वहां पे मक्खी कम से कम हो। मक्खी भगाने का कोई भी उपाय करिए आप, जो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ छिड़काव करिए चूना का, या फिर सफाई करिए, मतलब किसी भी तरह से आप वहाँ मक्खी का जो संख्या है वो कम करिए।
1: देखिए मैं बोला कि लोग धुआं वगैरह भी कर देना ताकि मच्छी भाग जाए, लेकिन जो आप कहते कि ज्यादातर मक्खी से ही होता, जैसे एक मक्खी दूसरे मक्खी से के काट देता, तो उनमें अगर लोग रुकाव करें जैसे आप चूना का उपयोग करे कहते हैं, उकरी अलावा भी कोनो उपाय है जहां से एक रोकल जा सकेला?
0: हाँ, ये एक्चुअली जो मक्खी होता है ना, कई तरह के मक्खी होते हैं। एक टेवेनस होता है, एक एस्टोमॉक्सिस होता है, एक एटाइलोटस होता है।
1: अच्छा।
0: तो इन सब मक्खियों को रोकने के लिए जो मेनली है कि सबसे पहले तो जल जमाव जो है वो सब आप वहां से हटाइए, कोई जल पानी जमा ना हो, जैसे कूलर है, कोई टीन का डब्बा है, कोई बर्तन है जिसको आपको, कोई टूटा फूटा बर्तन है या टायर रखा हुआ है पुराना, उसमें क्या होता है पानी जमा होता है, तो सबसे पहले उन सब गड्ढों को आप, या जहां भी पानी जमा होने वाला जो भी बर्तन है उनको वहां से हटाइए, और उसमें छिड़काव करिए, जैसे कोई ऐसे पदार्थ का जिससे कि उसमें बैक्टीरिया जमा ना हो, जैसे चूना छिड़ दिए, कई बार लोग किरोसिन ऑयल भी पानी जमा रहता है तो उसमें थोड़ा सा दो चार ड्रॉप डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मक्खी उसमें नहीं फैलता है, या फिर वहां रोज उस सेड को जिसमें पशु रहता है उसका धुलाई कराइए, गोबर हटाइए, सही से साफ सुथरा रहे इस तरह से।
1: डॉक्टर साहब अगर मान ली कोई कि पशु के रोग हो जाता तो लोग कैसे जाना, पशु में का लक्षण दिखी लोगन के, एक बारे में इतनी बताएं?
0: इसमें जो है मेनली क्या होता है, बुखार होता है पशु में, तेज बुखार होगा और वो रुक रुक के आएगा।
1: अच्छा।
0: जानवर कम खाएगा, कम खाएगा तो उसको कमजोरी होगी, सुस्ती होगी और दूध उत्पादन में कमी होगी। जैसे देखिए, क्योंकि ब्लड पैरासाइट्स है ये, तो ब्लड में जो रहेगा तो वो खून को तोड़ता है।
1: अच्छा।
0: जो आरबीसी है, हमारे सेल्स हैं ब्लड में, कोशिका हैं, उनको तोड़ता है, उससे ऑक्सीजन उसको कम मिलता है, जाता है, एनिमल लेथर्जिक हो जाता है, जल्दी मूव नहीं करना चाहेगा, हीमोग्लोबिन उसका कम हो जाता है, तो उससे ऑटोमेटिकली जो है कि जो पशु अगर कोई दूध दे रही है तो दूध घट जाएगा। आप चारा जितना डालते हैं रोज खाता है वो

0: रोज आप देखेंगे कि वो फिनिश कर लेता, मतलब खत्म कर लेता है, वही देखेंगे कि पड़ा रहेगा उसमें, वो खाता नहीं है, बुखार जैसा रहेगा। तो ये सारे जो लक्षण्स हैं, बाल रूखा हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, ये सारे लक्षण आप उसमें देखेंगे।
1: पशु रख ले हा? वो का में ध्यान रखें, जैसे कि मान लिया अगर उनके जानवर के हो गई है, तो अगर मान लो अगर उनका गाय या भैंस दूध भी देता है, तो का ओके बछड़ा के दूध पिलाएं कि ना पिलाएं, उनमें का
0: नहीं,
1: का सावधानी?
0: दूध पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, दूध में कुछ ऐसा खराबी नहीं होता है, क्योंकि वो कम खाती है और बीमार है तो दूध कम हो जाता है, उसका दूध खा सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि उसको अलग करना है बाकी जानवर से, जहां पे उसको बांधते हैं उसको अच्छे से साफ सफाई करिए, मक्खी कम हो, अगर हो सके तो थोड़ा हल्का सा धुआं भी करिए, और फिर उसको आप जो विटामिन्स है, आयरन्स है, मिनरल्स है, ये सारे देने पड़ेंगे। और जब भी इसका ट्रीटमेंट कराएं तो कोई जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, जो पशु चिकित्सक होते हैं, उनसे ही इसका इलाज कराएं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आपको बाकी लोग जो है आएंगे वो कई तरह के दवाई दे के जाएंगे, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा बीमारी है। तो जब तक वो प्रोटोजोबा को मारने के लिए उसका जो स्पेशल दवाई है वो नहीं देंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि जो मैंने बार बार बोला है कि ये ब्लड में होता है, खून में होता है, तो खून में जो आरबीसी है उसमें होता है वो तोड़ता है, तो हमको इसका मतलब है कि जो खून है उसकी भी कमी होगी, तो हमें ऐसा भी खाना देना है, दवाई देना है, जिससे कि उसका खून बने और खून बढ़े। तो उसमें जैसे विटामिन का दवाई हो गया, आयरन का हो गया, कैल्शियम का हो गया, इन सब चीजों का हमें देना पड़ेगा। और जब उसको ज्यादा फीवर होता है तो उसमें उसको हमें फ्लूड थेरेपी भी देना
1: ये
0: पड़ेगा।
1: कहा?
0: जैसे हम लोग आदमियों में पानी चढ़ाते हैं, वैसे जानवरों में भी पानी चढ़ाना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: तो जो बीमार पशु होते हैं इसके कारण से, उससे क्या होता है कि थोड़ा अगर आप उसको पानी चढ़वा देंगे और उसके साथ मेडिसिन भी देते हैं, तो जानवर जल्दी रिकवर करता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कहत रही हैं कि बीमारी में लक्षण दिखाई, तो बहुत से पशु पशु संचालक भाई लोग देखे कि ई मिलेला कि भाई उनकर ए रोग से पशु ग्रस्त हो गई ला, और बार बार वो जीभ निकाल के सांस लेता है या जीभ निकालत है, और कह जाओ कि तेज तेज सांस चलत है या लड़खड़ा के चलत है, तो उस समय वो लोग का ध्यान रखें और काहे मतलब कौन उपाय ओकर करे कि वो रोग से जल्दी भाई उनके निजात मिले?
0: उस कंडीशन में सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने से उसका इलाज ना करें, सबसे पहले जो उसके विशेषज्ञ हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनसे जाएं और उनसे मिलें। सबसे पहले उनको सारा चीज, आप जैसे जैसे आपकी जो जो परेशानी थी आपके जानवर को, वो सारा चीज अच्छे से उनको बताएं, ताकि इससे क्या फायदा होता है। अगर आप उनको सही सही जानकारी देते हैं डॉक्टर को, तो उनसे फायदा ये होता है कि उनको पता करने में ये आसानी होती है कि किस तरह की बीमारी है। आपको अगर उसका लक्षण जो है वो सही से बताएंगे तो उनको पता चलेगा जल्दी से, और वो आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उससे पहले जो है, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप जानवर को एक अलग जगह में कर लें, वहां पे साफ सफाई होना चाहिए, वहां पे थोड़ा चूना का छिड़काव कर दीजिए। एनिमल जो जानवर है आपका, गाय है सपोज, वो गंदा ना रहे, उसको ना हो तो धुलाई कर दीजिए एक बार अच्छे से, ताकि उस पे मक्खी ना बैठे। और वहां से कोशिश करिए कि बाकी स्वस्थ पशु हैं उनसे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि ये मक्खियों के काटने से ही फैलता है, तो इसीलिए अगर उस वहां इस जानवर को जो बीमार पशु है उसको काट के अगर अच्छे पशु को जाके, जो स्वस्थ पशु हैं उसको जाके काटेंगे तो उनको भी फैला देंगे। तो आपको पहले रोकथाम करना है और साफ सफाई रखना है, फिर पशु चिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जाना है और उनको सही सही उनके बारे में सारा चीज बताना है। और आपको ध्यान रखना है कि उसका पोषण, जो उसका खान पान है, आप जो उसको ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं वो दीजिए, जो आईजीली, जैसे मक्का का हो गया और आयरन का हो गया, कोई कैल्शियम का भी हो गया, या आयरन का सिरप हो गया, बहुत सारे आते हैं, वो आप पशु चिकित्सक के पास जाएंगे तो सारे बताएंगे, और वो आप उनको सारा देना शुरू करिए।
1: डॉक्टर साहब, अगर ये रोग कोई के पशु में हो जाता है, तो क्या ऐसा भी होला का कि अगर मान ली गाभिन है पशु का?

0: कर तो क्या में गर्भपात या बचपन अगर गाभिन ना है ऐसे ऐसे भी है तो क्या में बचपन का भी देखे कि शिकायत मिले लगा।
1: हाँ, अगर क्या कहते हैं ज़्यादा सीवियर हो गया, ये ज़्यादा मतलब बहुत क्रिटिकल हो गया, आप उसको नहीं ट्रीटमेंट करा पाए, तो इसमें बाँझपन भी होती है और बाद में इसकी मृत्यु भी हो सकती है।
0: अच्छा
1: क्योंकि ये जो है, जैसे कि पहले भी हम बात किए कि ये खून का बीमारी है और खून हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करता है, जो ब्लड के सेल्स होते हैं उसको तोड़ता रहता है, तो उससे एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और फिर एनिमल का डेथ भी हो जाता है। इसीलिए इसका जल्दी से ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है।
0: अच्छा एकरा बदे कोनो टीका भी है का कि जो से किसान भाई लोग पहले से सावधानी रख सके या पहले से कोई टीका लगा लें।
1: नहीं, इसका टीका तो नहीं है, इसका कोई उस तरह का वैक्सीन नहीं आया है, टीका नहीं आया है, बट इसका यही है कि सावधानी बरतना है,
0: अच्छा
1: जल जमाव जितना कम हो, पानी अगर है भी तो वो अगर बहता है, बह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं अगर पानी जमा है तो उसी में क्या होता है, जो मक्खी होते हैं वो लार्वा देते हैं और मक्खी की संख्या बढ़ती है और उसी से ये बीमारी फैलता है। तो इसका टीका नहीं है, इसका हमें उपाय करना पड़ेगा, वो सुरक्षा ही करना पड़ेगा और उसका बचाव करना
0: तो
1: पड़ेगा।
0: जिसन आप कहते हैं कि जल जमाव से या देखे कि मिले लगे बरसात के मौसम में ये बीमारी ज्यादातर होले पशुओं में तो का ये में पहले से भी लोग का का सतर्कता रखे जैसे आप कहनी है कि जल जमाव ना करे ना होके दे या मक्खी कीट ना लगे दे अगर मान ली लोग पहले से कर तैयारी कैसे करके रखा एक बारे में थोड़ा बता दें।
1: इसके लिए जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जब मानसून आता है, बारिश होती है, तो आपको देखना है कि कोई ऐसा टूटा फूटा बर्तन या डब्बा या टायर या जिसमें किसी कोई भी ऐसा सामान जिसमें पानी जमा हो सकता है, उन सब चीजों को अपने घर के आसपास से हटा दीजिए। ये पशु के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में मच्छर मक्खी पलते हैं, उसी में लार्वा देते हैं और उसी से मच्छर और मक्खियों की संख्या में वृद्धि होती है। हम लोगों में भी जैसे देखेंगे कि आदमी लोग में भी जो मलेरिया फैलता है मच्छर से फैलता है, वैसे ही जो है पशुओं में भी मक्खी से फैलता है, तो दोनों सबका सोर्स जो है एक ही है, गंदगी और पानी का जमाव। सबसे पहले ये देखना है कि आपके आसपास में गंदगी ना हो, पानी का जमाव ना हो, और जहां पशु है वहां रोज साफ हो, हफ्ता में एक दिन चूना का छिड़काव या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए।
0: तो मतलब अगर एक प्रकार से रख रखाव देखभाल कर जा तो अपने पशु में सरा रोग से बचल जा सकेला। डॉक्टर मनीष कुमार आप हमने उनके कार्यक्रम कृषि जगत में इनी और इतना बढ़िया जानकारी देनी एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दीना भैया
3: जतन भैया।
2: और देखा वो अनबोलता चौगा जोन हो ना,
3: हाँ
2: उनके बदे देखा कितना नगद के बत कही रहा है,
3: हाँ
2: पशुओं में सर्रा बीमारी कारण लक्षण और बचाव, और ये विषय पर देखा डॉक्टर मनीष कुमार से बतीलन है अपन सतीश कुमार यादव भैया।
3: देखा कितना नगद के बत कही रहा ला। किसान भाई लोग सुनत ला हाँ। और हम तो कहम ना देखा ई तो होता हो अब कुछ मन मनसायन भी होके के चाहिए आ ऐसे पहले ना ये जोन सनेस है ना सनेस सुन जा।

0: तो देखा भाई कुछ गौनाई भी होके के चाहिए। ज्योति सिन्हा है, देखा भाई किसान भाई लोग झूमर ते सुना झूम झूम के।
1: सुन लो भैया।

0: जीतन
1: नहीं
0: भैया,
1: बड़ा नगद गौनही रहला, नहीं
0: नैहर
1: रहल
0: का
1: नहीं
0: नगरी राजा बड़ा निक लागी,
1: नहीं
0: बड़ा
1: आ
0: सुंदर
1: देखा
0: गौनही
1: हो
0: रहला।
1: देखा एक गौनही तो हो गल, अब देखा कल के कार्यक्रम के बारे में भी किसान भाई लोगों
0: देखा
1: से बात
0: भाई,
1: हो जा।
0: सुबेरे सुबेरे जाना ना, 6:05 पे खेती की बातें में मूंग की खेती पे जानकारी दिए दिनेश कुमार सिंह भैया, संजय का सुनाओ तो।
1: सांझी के देखा यही समय जो हो 6:30 पर बातचीत हुई अनुभव खेती में, और ये विषय पर देखा पारसनाथ भैया से, पारसनाथ मौर्या भैया से बतिए हैं राजेश नारायण भैया।
0: देखा भाई, बात बत कही करत करत ना जितन भैया, अब चला कभी बेला भैल तो किसान भाई लगन से आज्ञा मांगल जा, तो चलल जा, तो
1: पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिए अलका याग्निक। अलका याग्निक और बाबुल सुप्रिया।

स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर, वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता। और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन

0: 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं, हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में यह सुनिए शान और सुनीति चौहान की युगल आवाजों में तारा रमपम फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और धुन तैयार किया विशाल शेखर ने।

शान और सुनिधि चौहान की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे तारा रामपम फिल्म का गीत, और अब सुनते हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की युगल आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा इरशाद कामिल ने और धुन तैयार किया ए आर रहमान ने।

तमाशा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार दिनेश पुत्र राम सकल 16 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे घर से कहीं चले गए और फिर वापस नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 37 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच और इनका रंग सांवला है। ये हरा काला पट्टीदार टी शर्ट और लोअर पहने हुए हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 7839858907 इस नंबर पर सूचित करें। सुनिए एक और सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना अनुसार शिवम सेठ पुत्र अजय कुमार सेठ ये करवत शक्ति माता मंदिर के पीछे डांडी मुगलसराय चंदौली के रहने वाले हैं। शिवम 24 जून 2026 दिन बुधवार को सुबह 9 बजे अपनी दुकान पर गए और लगभग 2:30 बजे अपनी दुकान से कहीं चले गए और अभी तक वापस नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें

इस प्रकार हैं। ये काले रंग का शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने हुए हैं। इनकी उम्र है 30 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, और इनका रंग गेहुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 9305669625 इस नंबर पर सूचित करें। सुनिए एक और सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना अनुसार प्रिया देवी पत्नी अंगद गिरी 22 जून 2026 लगभग सुबह 9:15 पर अपने 1.5 वर्ष के बच्चे के साथ कहीं चली गईं और वापस घर नहीं आईं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 23 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच और रंग गोरा है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर अपने निकटतम थाना को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:19 होने को हैं। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 7:20 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किया पारित। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं से 2 अगस्त को करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया था। लोकसभा ने आज इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने कल विधेयक को पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। इन अपराधों के लिए 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और देश के स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।
6: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है, यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है, और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
5: राज्यपाल एवं राज्य

0: विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन लखनऊ से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी दी गई। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअली जुड़े 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहां मेडिकल कॉलेज है, गाजीपुर से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गाजीपुर के स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े स्थानों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप, डिजिटल भारत, मिशन रोजगार के तहत लाखों नौजवानों को नौकरी मिल रही है। यूपी में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश व विकसित गाजीपुर के सारथी बनने का आह्वान किया।
1: आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा और जल्द ही रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8,000 से अधिक विवाद के मामलों में 2,173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5,000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर सहित प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर प्रदेश और देशवासियों के सुख शांति समृद्धि और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा और सुगम दर्शन की व्यवस्था को पूरे श्रावण मास में प्रभावी और निर्बाध रूप से बनाए रखे जाने का निर्देश दिया। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। पेश है एक रिपोर्ट।

0: सावन मास के प्रथम दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। धाम में आने वाले भक्तों का पुष्प वर्षा और रेड कारपेट के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 लाख अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए धाम में 6 स्थानों पर जिग जैग बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गौरी केदारेश्वर, तिल भांडेश्वर, महामृत्युंजय तथा बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे सावन माह में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज बरेली में बरेली व मुरादाबाद मंडल के जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
2: ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है जिसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा सम्पन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई।
1: मुख्य सचिव ने कहा कि सभी एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किया पारित। वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं से 2 अगस्त को करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो रहे हैं। आइए सुने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संपादन और वाचन आशुतोष का है, प्रस्तुति दिलीप यादव की और संयोजन है प्रफुल्ल कुमार सिन्हा का।
5: प्राच्य विद्या के सिद्धपीठ के रूप में संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का 44वां दीक्षांत महोत्सव दिनांक 29 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 9 बजे से विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने की। शिष्ट यात्रा के मुख्य भवन में आने के साथ वंदे मातरम गीत का गायन हुआ और तत्पश्चात विश्वविद्यालय के कुल गीत का संगीत एवं मंच कला संकाय के छात्रों द्वारा गायन किया गया।

0: स्वागत भाषण करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण रखते हुए अहर्निश सेवा पथ पर अग्रसर है। सन 1791 में संस्कृत पाठशाला या संस्कृत कॉलेज के रूप में स्थापित यह संस्था 22 मार्च 1958 से वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय और 1973 से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में अनेक सोपानों को पार करते हुए संप्रति अपनी स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति में अग्रसर है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हमारे संस्कृत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में क्रमशः नई दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, लेह और अरुणाचल प्रदेश आदि में संचालित हैं।
1: मान्याः विगत 30-40 वर्षेभ्यः पूर्वं वराह संस्कृत पाठशाला रूपे संस्थापिता संस्थैः कालक्रमेण काशीत राजकीय संस्कृत पाठशाला ततो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय रूपतां प्राप्य चतुस्सप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय रूपेण लब्ध प्रतिष्ठा पारे सहस्रं तपःपूतानां विविध विद्यानिष्णातानां आचार्याणां तपोभूमिरियं समग्रस्य संस्कृत जगतः श्रद्धास्थलमितो न जानाति। अत्र हि गृहीत विद्याः स्नातकाः न केवलं भारते किञ्च विश्वस्मिन् विश्वे संस्कृत विद्यानां ध्वजम् उत्तोलयन्तो दरीदृश्यन्तेति नास्ति तिरोहितं कस्यापि। वेद वेदांग साहित्य दर्शनादि पारंपरिक विद्याभि सह भाषा विज्ञानादि आधुनिक विद्यानां एकत्रैवस्मिन् परिसरे समन्वयः सम्यगवलोकयितुं शक्यते। न केवलं एतदेव किञ्च संस्कृत छात्राणां शीघ्रमेव आजीविका स्यात् इति धिया शिक्षा शास्त्र ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान पुरातत्व संग्रहालय विज्ञान पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान प्रभृतयो व्यवसायपरा पाठ्यक्रमः अत्र संचाल्यन्ते। भारतीय विद्यया सह आधुनिक विषय नैपुण्याय जर्मन, रशियन, फ्रेंच, स्पैनिश प्रभृतिषु भाषासु डिप्लोमा पाठ्यक्रमः अत्र संचालितः भवन्ति। विश्वविद्यालयः शैक्षणिक दृष्ट्या भौतिक रीत्या चानुदिनं वर्धयति इति विश्वे स्वीयं गौरवं वेधयति। अत्यन्तं हर्षस्य विषयोऽयं यत् आधुनिकशैल्या नूतनम् अतिथिभवनं निर्मीयते यस्योद्घाटनं नेत्र भविष्ये सम्पत्स्यते। सहर्षमेवं सूचयामि यत् अल्पीयसा संसाधनेनापि महनीयानां कुलाधिपतीनां सत्प्रेरणया विश्वविद्यालयपरिवाराणां सत्कर्मणा मेरुदण्डेन स्थितोऽयं विश्वविद्यालयः राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायेन परिषदा ए ग्रेड् इति उत्तम श्रेण्या समलङ्कृतः सन्नूतन शिक्षानीतेः क्रियान्वयने समर्थमाध्यमेन सामर्थ्याभिवर्धने शिक्षा समाज संस्कार सेवा समन्वये उन्नति पथम् आरुह्य भारतीय ज्ञान परम्परायाः संरक्षणे संवर्धने च तत्परो विद्यते।
0: स्वागत भाषण के पश्चात उपाधि वितरण और पदक वितरण का कार्य आरंभ हुआ। 44वें दीक्षांत समारोह में कुल 11,958 छात्र छात्राओं को उपाधि और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिनमें प्रथमा के कुल 106 स्नातक, पूर्व मध्यमा के 488, उत्तर मध्यमा के 494, शास्त्री के 5,418, आचार्य के 5,117, शिक्षा शास्त्री के 267, संस्कृत प्रमाण पत्रीय 1, आयुर्वेदाचार्य के 51 और विद्यावारिधि के 16 उपाधियां स्नातकों और स्नातिकाओं को प्रदान किए गए। उपाधियों और प्रमाण पत्रों का डिजी लॉकर के माध्यम से वितरण किया गया। राज्यपाल महोदया द्वारा बटन दबाकर कुल 11,958 प्रमाण पत्रों को एक साथ डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया। दीक्षांत महोत्सव में विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने

वाले 29 छात्र छात्राओं को विभिन्न नामों से कुल 51 पदक प्रदान किए गए, जिसमें 17 छात्रों और 12 छात्राओं को पदक प्रदान किए गए तथा पीएचडी उपाधिधारियों और चयनित अध्यापकों का सम्मान भी किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के उपलब्धियों पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन भी किया गया और गोद लिए गए 5 गांवों के बच्चों को भी पुरस्कार देकर उनका उत्साह वर्धन किया गया। 44वें दीक्षांत महोत्सव की थीम थी संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा, विकसित भारत 2047 की वैचारिक अधिष्ठान भारतीय ज्ञान विज्ञान, सांस्कृतिक मूल्यों एवं संस्कृत की शाश्वत परंपरा को आधुनिक भारत के विकास से जोड़ने का ये एक सशक्त संकल्प है। यह थीम इस संदेश को प्रतिपादित करती है कि संस्कृत और भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल हमारी गौरवशाली विरासत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, समृद्ध, नवोन्मेषी एवं विकसित भारत 2047 के निर्माण की सुदृढ़ आधारशिला भी हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा लघु नाटिका पुकार जल की, जिम्मेदारी कल की का मंचन भी किया गया। साथ ही बरसन लागी बदरिया इस लोकगीत का छात्राओं के द्वारा नृत्य में प्रस्तुति दी गई।

0: दीक्षांत महोत्सव के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि हमारी संस्कृति में मातृ पितृ और गुरु को विशेष स्थान प्राप्त है। इस संदर्भ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा,
1: विद्यार्थियों ये आपके श्रम का परिश्रम का लगन का परिणाम है कि आप इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, आपको पूरे जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए कि इससे पीछे आपके माता पिता और गुरुओं का विशेष योगदान रहा है। इसलिए उनको भी बधाई, उनको भी प्रणाम। विद्यार्थियों आपके माता पिता के प्यार बलिदान और संघर्ष के बिना यह मुकाम हासिल करना मुश्किल है। न जाने उन्होंने कितने अपनी खुशियों का त्याग किया होगा, अपने सुखों का बलिदान किया होगा, कैसे कैसे संघर्ष किया होगा, पेट को काट कर आपको पढ़ाया होगा और उसके परिणाम सुपरिणाम लिखने के लिए आपने उपाधियां प्राप्त की, आपको मेडल्स मिले, आपके गुरुओं का कौशल और समर्पण इससे पीछे खड़ा है। इससे जीवन पर्यंत उनके प्रति आपको कृतज्ञ रहना चाहिए और हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, इन तीन रिश्तों को ही देवतुल्य माना गया है। आज आपने अपनी शिक्षा का एक मुकाम पूर्ण किया है, लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी शिक्षा संस्कार देने वाली हो मानव जीवन में क्या जरूरी है, शिक्षा या संस्कार? तो स्वामी

0: संस्कार युक्त शरीर है। इसलिए जो चिंता संस्कार है उससे वो किसी काम की नहीं होती। संस्कार भी शिक्षा न तो सब व्यक्ति का विकास करती है, न समाज को शिक्षा देती है, न राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो पाती है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ये संस्कार दे कि हम अपना विकास समाज के हित में क्या कर सकते हैं और राष्ट्र के हित में क्या कर सकते हैं। ये भाषणों से नहीं आचरण से आए। वर्तमान में आप दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं वर्तमान नियुक्ति के, जिनके आचरण से ये हमको प्रतीत होता है, संदेश होता है कि संस्कार शिक्षा राष्ट्र के प्रति समर्पित कैसे होते।
1: दीक्षांत महोत्सव के मुख्य अतिथि आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग संस्थान के आचार्य और अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने दीक्षांत भाषण करते हुए कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालयों की भूमिका आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आवश्यकता केवल शास्त्रों के अध्ययन की नहीं बल्कि उनमें निहित ज्ञान को आधुनिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक बौद्धिक विमर्श से जोड़ने की है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी समृद्ध परंपरा को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी शक्तियों में इसकी अनुपम पांडुलिपि संपदा है।
2: आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस भी है। काशी के पावन ज्ञान भूमि पर भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिष्ठित केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में आपके बीच उपस्थित होना मेरी अत्यंत गौरव, आत्मीयता और प्रेरणा का विषय है। काशी केवल एक नगर नहीं है, भारत की सनातन ज्ञान चेतना का जीवन प्रतीक है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक उत्कृष्टता के साथ व्यक्ति, समाज और मानवता का कल्याण रहा है। यह विश्वविद्यालय उसी परंपरा का संसद संवाहक है। सहस्रवी भवन की पांडुलिपियां हमें स्मरण कराती हैं कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों में निहित होती है। आज का यह दीक्षांत समारोह केवल उपाधि वितरण का अवसर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व ग्रहण करने का पावन क्षण है। भारतीय परंपरा में दीक्षा का अर्थ केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि जीवन को लोक मंगल के लिए समर्पित करना है। हमारे शास्त्र कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते और विद्या जाति विनियम विद्या याति पार्थताम। ज्ञान तभी सार्थक है जब विनम्रता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का आधार बने। प्रिय विद्यार्थियों, आज की उपाधि केवल आपके परिणाम का प्रमाण नहीं, इसमें गुरुजनों का विश्वास, अभिभावकों का प्यार और समाज की अपेक्षाएं भी जुड़ी हैं। आज से आपकी नई यात्रा प्रारंभ हो रही है जिसमें समाज और योग्यता के साथ चरित्र, आचरण और उत्तरदायित्व से पहचानेगा। आज का विश्व अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, क्वांटम प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा सामग्री विज्ञान, डिजिटल तकनीक मानव जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे समय में एक प्रश्न है, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान दो अलग अलग संसार हैं? मेरा उत्तर स्पष्ट है, नहीं। विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान हमें जिज्ञासा, तर्क और नवाचार की शक्ति देता है। भारतीय दर्शन हमें विवेक, नैतिकता और मानवीय उत्तरदायित्व का बोध कराता है। विज्ञान साधन प्रदान करता है, संस्कृति साध्य का मार्ग दिखाती है। जब ये दोनों धाराएं एक साथ प्रभावित होती हैं तभी ज्ञान मानवता के कल्याण का वास्तविक माध्यम बनता है। संस्कृत की विरासत केवल निश्चित निष्कर्षों का कोई संग्रह नहीं है, वह 2 सहस्र वर्षों से भी अधिक समय से लगभग हर निष्कर्ष पर संस्कृत में ही तर्क हुए हैं। प्रश्न उठे हैं

0: अभेद हुए हैं और काशी श्रम इस जीवन परंपरा की भूमि रही है। संस्कृत की असली विरासत तर्क, संशय, शास्त्रार्थ, विरोध, प्रतिवाद और निर्भीक प्रश्नकुलता की विरासत है। वही परंपरा जिसे काशी ने सदियों से जिया और प्रतिष्ठित किया है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस संवाद को और भी तीखा बना रही है। वह स्मृति, गणना, भाषा, चित्र और संगीत की ऐसी नकल कर सकती है कि मनुष्य को केवल उसके परिणाम से आता जाए तो हम में से बहुत लोग अनावश्यक प्रतीत होने लगेंगे।
1: दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व में कहीं से भी प्राप्त होने वाले ज्ञान का स्वागत करती है। प्राचीन पांडुलिपियों से लेकर आधुनिक संसाधनों तक से प्राप्त होने वाले ज्ञान का सदैव स्वागत होना चाहिए।
2: समारोह के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष केमिकल इंजीनियरिंग संस्थान IIT कानपुर पद्मश्री आशुतोष शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्य, विश्वविद्यालय के समस्त संकाय अध्यक्ष, आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां और विभिन्न स्कूलों में से आए हुए प्यारे प्यारे बच्चे और उसके टीचर, देवी और सज्जन, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की आप सभी को हार्दिक बधाई। काशी जहां गंगा की अविरत धारा के साथ ज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कृत की निर्मल परंपरा सदियों से प्रवाहित होती जा रही है। यहाँ की माटी में ऋषियों की तपस्या है, यहाँ की वायु में वेदों का मंत्रनाद है और यहाँ के कण कण में भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद विद्यमान है। ऐसी पुण्य भूमि पर ज्ञान और संस्कार की इस महान परंपरा के केंद्र में आज उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को और उनके परिवारजनों को और उनके सभी अध्यापक गणों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज समारोह में 11,955 उपाधियों का वितरण हुआ है। इनमें 3,213 छात्राएं और 8,742 छात्र शामिल हैं। वही 19 विद्यार्थियों को 51 पदक प्राप्त किया है, जिनमें 12 छात्राएं और 17 छात्र हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पारंपरिक शास्त्रों और वेदों की शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आवश्यकता है कि उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने के लिए अधिक अवसर, प्रोत्साहन और प्रेरणा दी जाए तो संख्या बढ़ती जा रही है। समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री से अलंकृत प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी की उपस्थिति प्रेरणा का विषय है। नैनो विज्ञान, रासायनिक अभियांत्रिकी, उन्नत पदार्थ विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के क्षेत्र में आपके असाधारण योगदान ने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर विशिष्ट पहचान कराई है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इन्फोसिस पुरस्कार और यूनेस्को मॉडल सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित आपका व्यक्तित्व प्रतिभा, साधना और वैज्ञानिक उत्सुकता का उदाहरण है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में आपके दूरदर्शी नेतृत्व ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, अति आधुनिक बुनियादी ढांचे, उद्योग अकादमी सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहभागिता को नई दिशा प्रदान की। आपके ज्ञान का विस्तार, अनुभव की गहराई और नेतृत्व

0: के दूरदर्शी युवा वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपका मार्गदर्शन अनुसंधान की नई संभावनाओं के द्वार खोलने के साथ भारत को ज्ञान विज्ञान और नवाचार की वैश्विक शक्ति बनाने के संकल्प को भी और अधिक गति प्रदान करेगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अनेक दशक से वेद उपनिषद दर्शन व्याकरण आयुर्वेद ज्योतिष योग साहित्य तथा भारतीय संस्कृति की अविरत ज्ञान धारा को अक्षुण रखते हुए ज्ञान का प्रकाश देश विदेश में प्रसारित कर रहा है। यह विश्वविद्यालय संस्कृत के साथ साथ पाली प्राकृत तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयामों के अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान को निरंतर नई दिशा प्रदान कर रहा है। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन एवं शोध के लिए आते हैं, जो इस विश्वविद्यालय की वैश्विक शैक्षणिक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय पांडुलिपियों के संरक्षण उनके डिजिटीकरण शोध ऑनलाइन शिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहाँ संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां केवल भारत के धरोहर नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता की अमूल्य बौद्धिक विरासत है। मेरा विश्वास है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी समृद्ध परंपरा और आधुनिक तकनीक के समन्वय से भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा विश्व भर में भारत के ज्ञान विज्ञान और संस्कृति की प्रतिष्ठा को और अधिक सुदृढ़ करने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। भारत विश्व की उन महान सभ्यताओं में है जिनकी सांस्कृतिक यात्रा हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहित होती आई है। भारतीय संस्कृति ने समय के परिवर्तन के साथ स्वयं को निरंतर विकसित किया। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति आज भी केवल भारत की पहचान नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय संस्कृति की महत्ता इस बात में निहित है कि यह जीवन को खंड में नहीं बल्कि एक समग्र इकाई के रूप में देखती है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है बल्कि व्यक्ति के चरित्र विवेक और व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। सा विद्याया विमुक्तये अर्थात जो ज्ञान मनुष्य को अज्ञान भय और बंधनों से मुक्त करे वही सच्ची शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन और श्रेष्ठ कर्मों के लिए सक्षम बनाना है। शून्य और दशमलव पद्धति से लेकर खगोल संबंधी गणनाओं तक, आयुर्वेद से लेकर योग और ध्यान तक भारतीय ज्ञान परंपरा ने मानव जीवन को समझने और उसे स्वस्थ एवं संतुलित बनाने के अनेक मार्ग प्रदान किए हैं। योग आज विश्व भर में शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और समग्र कल्याण के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। यूनेस्को ने योग को 2016 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। इसी प्रकार वैदिक मंत्रोच्चार रामलीला कुटियाट्टम कुंभ मेला दुर्गा पूजा गरबा और दीपावली जैसी भारतीय परंपराओं को भी वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के रूप में मानवता मिली है। मित्रों,
1: उन्होंने मेरा गांव मेरा सम्मान का हवाला देते हुए गांवों के डिजिटलीकरण का उल्लेख करते हुए उनसे जुड़ी संस्कृतियों के संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
0: आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि पूरे भारत में 52 लाख से अधिक पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण हो चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश की भी बड़ी संख्या में पांडुलिपियां शामिल है। यह उपलब्धि भारत की समृद्ध ज्ञान संपदा के व्यापक विस्तार और हमारी सांस्कृतिक विरासत की गहराई को दर्शाती है।

0: अब तक लगभग 3,50,000 पांडुलिपियों के 3.5 करोड़ से अधिक पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पोर्टल पर 1,35,000 से अधिक पांडुलिपियों को अपलोड किया जा चुका है।
1: कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रविशंकर पांडे ने किया। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना के साथ कुलाधिपति द्वारा महोत्सव समापन की उद्घोषणा के साथ समारोह संपन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संपादन और वाचन स्वर आशुतोष, प्रस्तुति दिलीप यादव, संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा।
2: अभी आप सुन रहे थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
3: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
4: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संसद ने मंजूरी दे दी है। आज लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा कल ही यह विधेयक पारित कर चुकी है। राज्यसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कर दी है। यह विधेयक कल लोकसभा में पारित किया जा चुका है। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि सांसदों से दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। भारत संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थक सुधारों की वैश्विक रैंकिंग में 25 स्थानों पर चढ़कर 82वें स्थान से 57वें स्थान पर पहुंच गया है। केरलम पुलिस ने राज्य में अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान तूफान के अंतर्गत 62 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 58 नए मामले दर्ज किए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की गोलाबारी में 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य

0: समाचार सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। अभी आप सुन रहे थे समाचार और अब आगे लिए चलते हैं आपको हमारा जो अगला प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती की तरफ।
1: बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान है। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लिखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहां नया

मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से

संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्त, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग, लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं।
शिक्षा पर आखिर

सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: आने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
7: प्यार दास।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी। रसमाधुरी कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बहू बेगम। इस फिल्म से मिली जुली आवाजें हैं आशा भोसले, लता मंगेशकर और सखियों की।

आशा भोसले, लता मंगेशकर और सखियों की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे बहू बेगम फिल्म का गीत। और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में परख फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

वाणी जयराम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे गुड्डी फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा गुलजार ने और धुन तैयार किया वसंत देसाई ने। और अब आइए सुने रसमाधुरी कार्यक्रम की अगली पेशकश, घर परिवार फिल्म का गीत। सुनिए साधना सरगम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा अनजान ने और धुन तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने।

साधना सरगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे घर परिवार फिल्म का गीत, और अब आइए सुने कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत। मिली जुली आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। इस गीत को लिखा है सच बिहारी ने और धुन तैयार किया ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 222-1052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
0: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। आइए सुने लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की युगल आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का ये गीत।

0: प्यासा सावन इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
2: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच

0: दो महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूंगा।
1: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
4: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
6: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश

0: की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली

0: जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Janagana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Rajya Sabha, the discussion is underway on public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh moved the bill. Chairman C.P. Radhakrishnan said that 7 hours have been allocated for the discussion on the bill. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. We have more from a correspondent.
2: Both the houses of parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha today approved the prevention of insults to national honor amendment bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill yesterday. After approving the legislation, the lower house was adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Rajya Sabha is discussing the public examination prevention of unfair means amendment bill 2026, which was cleared by the Lok Sabha yesterday. The Lok Sabha today faced adjournment.

0: compatriot Tharun Manapalli. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 274 points, or 0.35%, to close at 77,928, while Nifty added 67 points, or 0.3%, to settle at 24,317. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। पार्लियामेंट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज़ हासिल होगा जो कौमी तराने को हासिल है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मल्लाहों समेत शहरियों के मफादात के तहफ्फुज के लिए एक मुत्तहिदा निज़ाम कायम किए जाने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो उन अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने नीट एहतजाज में हिस्सा लिया था, अलबत्त मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को कोई तहफ्फुज हासिल नहीं होगा। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया के तनाज़े के फौरी हल की उम्मीदें मांद पड़ गई हैं। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल इंतहाई तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। दौलत मुश्तरका खेलों में जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह मर्दों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी ताज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज इस बिल को मंजूरी दी, राज्यसभा में ये बिल कल मंजूर हो चुका है। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कौमी ताज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक एक्ट 1971 में मजीद तरमीम के लिए बिल पेश किया। इस कानून की रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज़ फराहम किए जाने की बात की गई है जो कौमी तराने जन मन गण को हासिल है। इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि यह बिल सिर्फ एक कानूनी तरमीम नहीं है बल्कि यह बिल भारत की सकाफती विरासत, कौमी शनाख्त और मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी के मिसाली तसव्वुरात की नुमाइंदगी करता है।
2: राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: इससे कल बहस में हिस्सा लेते हुए डीएमके की के कनीमोझी ने बिल की मुखालफत की। उन्होंने दावा किया कि यह बिल मुल्क के अवाम को तकसीम करता है। बिल की हिमायत करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि यह कानून बहुत अहम है। जनाब पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आइन साज असेंबली को यकीन दिलाया था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को यकसां एहतराम फराहम किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गांधी खानदान की क्यादत वाली कांग्रेस हुकूमतों ने वंदे मातरम को कभी मुनासिब एहतराम नहीं दिया। बिल की मंजूरी के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर व खौज किया और इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा

ने कल इस बिल को मंजूरी दी थी। दोपहर के खाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अहलकार अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। इस कानून में कई अहम शिक्के शामिल हैं जिनमें खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और इमलाक को जब्त किए जाने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। मामलात को तेजी से निपटाए जाने को यकीनी बनाने की गरज से इस कानून में ये बात कही गई है कि हर रियासती सरकार और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करे ताकि रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जा सके। इसमें मजीद कहा गया है कि खिलाफ वर्जियों की तहकीकात पुलिस थाने में इत्तला रिकॉर्ड किए जाने की तारीख के 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल हो जानी चाहिए। फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के बाद मुकदमात की कार्रवाई 3 महीने के अंदर मुकम्मल करनी जरूरी होगी। ऐवान में बिल पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल मुल्क के तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद को तहफ्फुज फराहम करने के हुकूमत के आला तरीन अज़्म की तौसीक है। डॉक्टर सिंह ने एक बार फिर पब्लिक इम्तहानात में धांधलियों और पेपर लीक के मामलात के तई हुकूमत के कतई बर्दाश्त न करने के अज़्म को दोहराया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस बिल को लाने के सिलसिले में बिल्कुल भी वक्त न गवाए जाने से हुकूमत के इस अज़्म का इजहार होता है कि किसी को इस बात की इजाज़त नहीं हो सकती कि वह तलबा के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाए। बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन के लीडर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत ने नए बिल में सिर्फ ऊपरी तब्दीलियाँ कर दी हैं और मुजवजा तरमीमात पब्लिक इम्तहानात में धांधलियों को ख़त्म करने के लिए मौसर साबित नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुजवजा बिल की हिमायत करती है, ताहम इसमें शफाफ और पेपर लीक से पाक इम्तहानात को यकीनी बनाने के लिए सख्त शिकों की कमी पाई जाती है। पार्लियामेंट ने पेपर लीक मुखालिफ बिल को मंजूर किया जिसमें सख्त तरीन सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने की गुंजाइश शामिल है। इसका मकसद इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। यह बिल राज्यसभा में कल पास हो गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के जारी तनाज़े और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदामात के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी CCS की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने रूनुमा होने वाले तमाम वाकयात पर मुस्तकिल नजर रखने के एक मुत्तहिदा और तालमेल पर मबनी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया ताकि शहरियों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए किए जाने वाले इकदामात पर तेज रफ्तारी के साथ अमल आवरी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बरवक्त इत्तला फराहम करने, हंगामी हालात में तआवुन देने और मल्लाहों और उनके अहले खाना के लिए काउंसलिंग फराहम करने का एक निज़ाम कायम करने की भी हिदायत दी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि ऐसे तमाम इकदामात किए जाने चाहिए जिनसे कीमियावी खादों की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वजीर आजम ने मजीद जोर देकर कहा कि इस तनाजे के असरात से शहरियों और भारतीय बिरादरी के अफराद को महफूज रखने के लिए तमाम कोशिशें की जानी जरूरी हैं। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई के जराए को इस्तेमाल करने की भी ताकीद की ताकि तवानाई के शोबे में आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके। इस मामले पर CCS की ये चौथी मीटिंग थी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उन अफराद के खिलाफ कोई मनफी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने कौमी राजधानी में NEET UG एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत की थी। अलबत्ता जिन लोगों का मुजरिमाना पस मंजर होगा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखिला ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है तो गिरफ्तारियों पर नजरसानी करने और गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करने के लिए कार्रवाई फौरी तौर पर की जाएगी। महकमे ने कहा कि दिल्ली सरकार एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ किसी तरह की मजीद मनफी कार्रवाई करने की तजवीज़ नहीं देती और ये मामला इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई किए बगैर ख़त्म समझा जाना चाहिए। इसने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे तक दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के सिलसिले में मजमूई तौर पर 13 मामला दर्ज किए हैं। टैली मवासलात के महकमे और मध्य प्रदेश की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये मुफाहमत नामा मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ मरहला 1 के क्याम के लिए किया गया है। ये इकदाम टेलीकॉम आलात और मुंसलिका टेक्नोलॉजियों के लिए आलमी दर्जे का मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम वजह करने के लिए किया गया है। ये रोजगार के नुमाया मौके वजह करेगा, इलाकाई सनती तरक्की को फरोग देगा, सप्लाई चेन लचक को मुस्तहकम करेगा और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इख्तरा के लिए भारत को एक आलमी हब के तौर पर
قائم کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مواصلات کے مرکزی وزیر

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस समझौते पर दस्तखत करना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक नए बाब का आगाज है। तकरीब से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि ये इकदाम रियासत को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डिजाइन पैदावार और आलमी बरामदात के लिए एक कलीदी मरकज में तब्दील करने की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के तीन असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजालपुर और मध्य प्रदेश में दतिया हलके में वोट डाले गए। चुनाव कमीशन के मुताबिक बांकीपुर हलके में आखिरी खबरें मौसूल होने तक 34% से ज्यादा वोटिंग हुई। मंजालपुर हलके में 37% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि दतिया हलके में 71% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने आज एक दूसरे पर ताज़ा मिज़ाइल के हमले किए, जिसके बाइस बड़े पैमाने पर इलाकाई जंग के अंदेशे उभर कर आए हैं। नीज किसी फौरी हल के लिए इम्कानात मादूम हो गए हैं। हलाकतों में कलील वक्फे के बाद इन ताज़ा हमलों ने इस तशवीश में इजाफा कर दिया है कि ये जंग मजीद मुल्कों में भी फैल सकती है। उर्दुन ने कहा है कि उसने मुसलसल दूसरे रोज 5 ईरानी मिज़ाइलों को नाकारा बना दिया है। कुवैत ने खबर दी है कि मुल्क के जुनूब में एक चीनी कंपनी से ताल्लुक रखने वाली एक इमारत ईरानी हमले से मुतासिर हुई, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जंग का यह हालिया फैलाव ईरान पर वसी पैमाने पर अमरीकी हमलों के बाद हुआ है, जो उसने उर्दुन में एक फौजी ठिकाने पर ईरान के मिजाइल के हमले के जवाब में किया था। दोनों जानिब से मिजाइल के ये हमले सऊदी अरब के साथ तालमेल से अमरीका के जरिए इराक में ईरान की मुआविनत वाले मिलिशिया पर किए गए हमलों के बाद हुए हैं। खबर है कि हमलों में कम से कम 20 फाइटर्स और 6 ईरानी फौजी मुशीर हलाक हुए थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की जानिब से वहशियाना हमले के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की फायरिंग में पीर के रोज 40 से ज्यादा सिविलियन हलाक हुए थे। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAAC से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स में मुजाहिरीन के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा गया है कि मुजाहिरीन वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ रावलकोट के डी चौक पर कई दिन से बैठे हुए हैं और वो एक लॉन्ग मार्च का नारा दे रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए बेरहमाना और बहिमाना हलाकतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। JAAC ने अक़वामे मुत्तहिदा, बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों और जमहूरी हुकूमतों से मुदाखलत की अपील की है। उसने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कारामद, गोला बारूद और बहुत ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रियासतों में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज करते हुए तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत इन चैलेंजों से निमटने के लिए मुतल्लिका रियासती सरकारों के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने सबकी सेहतयाबी और तहफ्फुज के लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश की। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात और मध्य प्रदेश में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की रेड अलर्ट वार्निंग जारी की है। आइंदा दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाल मशरकी भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह के मौसम की सूरत हाल रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में कल गरज चमक के साथ बिजली चमकने और तुंध हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। दिल्ली के लिए महकमा मौसमियात ने कल आम तौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि सैलाब के पानी के बायस महानदी दरियाई निजाम में तुगयानी आ रही है। इसी के साथ इम्कान है कि बहुत बड़ी मकदार में सैलाब का पानी आज शाम तक मुंडाली पहुंच जाएगा। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में नीरज चोपड़ा मर्दों के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह भी इस मुकाबले के फाइनल में पहुंचे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज 5वें मकाम, रोहित यादव 9वें और यशवीर सिंह 10वें मकाम पर रहे। इससे पहले भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों के पैरा एथलेटिक्स मुकाबलों में मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल मुकाबले में दिलीप महादो गविट ने सोने का और मोहम्मद बासिल मोरिसिंग
کاتھ نے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی. گاوٹ نے بہتر

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो के घड़ी में रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

अंजुमन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल। अब आइए सुने आशा भोसले की गाई गज़ल। कार्यक्रम है अंजुमन।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। आइए अब सुने गुलाम अली की गाई ये गजल।

अंजुमन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई ये गज़ल, और अब आइए सुनिए तलत अजीज़ और पिनाज मसानी की गाई ये गज़ल।

0: तलहतदी अजीज़ और पिनाज मसानी की गाई इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कीजिए इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।
1: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: क्वेश्चन नंबर 21।
4: प्रश्न संख्या 121। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
5: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रहा
2: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: थैंक यू सर। Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and tribal communities in planning and implementation? Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports? Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation? The expected...
2: Konstantinji, be specific about your question. Okay. So long question, then come to the specific question, please.
5: Okay.
2: Carry on.
3: The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir.
6: Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit-sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023. Supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit Sharing Regulation 2025. The

0: Present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, the State Biodiversity Authority and Biodiversity Council, and management committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
1: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
2: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport Gram Sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
0: Sir, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reverse biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit, the concerned community, which is the question is raised by the particular one. Yes, also.
1: Third supplementary, श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी.
3: एनवायरमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है और दूसरा भी इससे जुड़ा है कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करें।

0: और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है।
1: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है, वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
2: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रघी।

0: श्रीमान ए रहीम जी।
1: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं। ख श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है। ग क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और घ क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है।
0: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
2: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन द डीसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी व्हिच सीक्स टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड वाज सपोर्टेड बाय द बोथ इंडियन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स especially when such absenteeism risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
0: Honorable Minister.
1: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चंस पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
0: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑन वेजेस will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
0: Honorable Minister.
3: Maninya Adhyaksh Mahoday, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल

0: मेक्सिको सिक्योरिटी सुनिश्चित हो। और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ACESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2024 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को देश को बताना चाहूंगा, 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको

0: रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको कि कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है। और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, 3 क्लासिफिकेशन दी है, ए, बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था

0: व्यवस्था करी है ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पुरता खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था। आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें, वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था। स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है। तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं। उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: हेड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 year once or 3 year once or 2 year once regularly. The ministry should announce the minimum wages every financial year without fail. Sir, the minimum wages not announced yearly by the ministry. The ministry has any proposal to announce minimum wages every financial year that will help the laborers across the country. Thank you, sir.
1: Honorable Minister.
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार VDR के द्वारा, VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने की कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटेक्ट केयर में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या? और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ा

0: बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपना सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124, श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
2: 124
3: प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: रक्षा निखिल खड़से, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलेटिक्स, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है, और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी
1: है।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है, और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफी अग्रसर भूमिका रखी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए, और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
6: शुक्रिया चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें, हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं, और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे, आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा, और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया

0: ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशंस का जहां उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो, उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग संडे ऑन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: हेड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
3: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
4: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं, 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर

0: है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
2: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या, उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125।
5: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
4: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
6: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को
0: हम बदल के

चार कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये चार कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकार हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में फ्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने तक, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हमें एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्क फोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ी नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ी नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंसर लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसका आंसर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 रही, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुश होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप के लिए भारत सरकार मदद दिया। इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना। इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं एंड किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए। इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।

0: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
1: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
2: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताइए 29 कानूनों को हम निकाल के और ब्रिटिशर्स का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और एनी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक का काम बढ़ाया है सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नहीं तो भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
0: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
2: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ईश्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.3 करोड़ लोग जुड़े हैं।
0: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोर्ट में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
0: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है, मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
0: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
5: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
6: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की

0: राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख, आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग, उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ, उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
2: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया, थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, वाइल रिप्लाई इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड। सो माय पिन पॉइंट क्वेश्चन टू यू, हैज द गवर्नमेंट अंडरटेकन एनी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड, इंक्लूडिंग सक्सेस रेट, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो उस स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत तीन सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंडिया जी।
4: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज है, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बताएंगे। धन्यवाद।
1: द हाउस स्टैंड्स अडजॉर्न्ड टू मीट एट 2 PM।
0: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
5: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
6: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 222-1052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है

0: 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉक्टर जीतेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है।

0: Games medals with 15 medals, including 3 gold, 9 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।